ラワウェラワウェよーなうざずんでラウェ

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का उनके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। सबसे पहले स्वीकार करें वायला खवानो का कोनिचिवा नमस्कार।
1: आवाज की दुनिया के सभी साथियों को कामायनी सिंह का भी प्यार भरा नमस्कार कोनिचिवा। लेकर हाजिर हैं आपके पत्रों के जवाब और आओ पकाएं जापानी खाना।
0: कामायनी जी, देखिए जुलाई का महीना लगभग आधा बीत चुका है और अब बस मन कर रहा है कि गर्मियां शुरू हो जाएं, इस बारिश से छुटकारा मिले।
1: हाँ, ये तो है, बरसात खत्म होने पर गर्मी तो होगी, लेकिन मनोरंजन के लिए समुद्र तट जा सकते हैं, पहाड़ों पर चढ़ सकते हैं, आतिशबाजी देख सकते हैं।
0: अरे हाँ, और देखिए 1 जुलाई से फुजी पर्वत पर चढ़ने का मौसम भी तो शुरू हो चुका है
1: जी,
0: और स्कूलों में जल्द ही छुट्टी भी होने वाली है, तो गर्मियों का पूरा मजा लिया जाएगा।
1: लेकिन आजकल पहले वाली गर्मियां नहीं रही, तापमान 40 डिग्री को छूने लगा है, इसलिए दिन में बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है।
0: हाँ, और वैसे तो आजकल भालुओं का भी आतंक है, तो सुनसान पहाड़ी इलाकों पर जाना खतरे से खाली नहीं है।
1: ये भी एक नई समस्या है आजकल, गर्मियों में कहाँ चले इस पर बाद में बात करते हैं। बहरहाल चलते हैं आज के पत्रों की ओर।
0: जी हाँ, तो देखिए ये सबसे पहले ये पत्र है रामकुमार नीरज जी का, आरा बिहार से।
1: क्या लिखते हैं?
0: और ये लिखते हैं कि हिंदी सेवा की वेबसाइट पर सैन्य हमले व व्यापार को लेकर तनाव के बीच मोदी और ट्रंप की मुलाकात रिपोर्ट पढ़ी, और सबसे पहले रिपोर्ट का शीर्षक पाठक को ये संकेत देता है कि भारत अमेरिका संबंधों में तनाव है, लेकिन खबर उस तनाव की गहराई, उसके कारणों और उसके संभावित प्रभावों पर बहुत कम प्रकाश डालती है। दूसरी बात, ओमान के निकट हुए हमले में 3 भारतीय नाविकों की मृत्यु का उल्लेख तो है, लेकिन रिपोर्ट में ये स्पष्ट नहीं किया गया कि हमले की जिम्मेदारी किस पर थी। रिपोर्ट का सबसे दिलचस्प हिस्सा ट्रंप की टिप्पणी है, जब उनसे मृत नाविकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने केवल इतना कहा, ये एक कठिन पेशा है। ये उत्तर राजनीतिक रूप से सुरक्षित भले ही हो, लेकिन मानवीय दृष्टि से काफी फीका प्रतीत होता है। कुल मिलाकर ये रिपोर्ट सूचना तो देती है, लेकिन विश्लेषण कम करती है। ये घटना के तथ्यों को सामने रखती है, पर उसके पीछे छिपे शक्ति संतुलन, आर्थिक दबावों और कूटनीतिक असमानताओं पर गहराई से चर्चा नहीं करती।
1: रामकुमार जी, आपके पत्र के लिए आभार, आपने बहुत बारीकी से पूरी खबर का विश्लेषण किया है और अनकहे पहलुओं पर ध्यान आकर्षित किया है। आपका सवाल कि केवल तथ्यों को रखा गया और विश्लेषण को नहीं, इस पर हम कहना चाहते हैं कि ये केवल समाचार थे जिसमें घटनाक्रम को ज्यों का त्यों बताया गया।
0: शायद इसीलिए आपको खबर अधूरी सी लगी होगी, और इस पूरी मुलाकात के क्या मायने थे और इसके पीछे क्या इरादे थे, उस पर अगर कभी कोई सामयिकी या विश्लेषण होता है तो उस पर भी हम जरूर जानकारी देंगे। फिलहाल केवल एक समाचार की तरह इसे प्रस्तुत किया गया।
1: अब अगला पत्र है किसिंगा ओडिशा से सुरेश अग्रवाल जी का। दरअसल इनके 2 पत्र हैं।
0: अच्छा, तो दोनों ही ले लीजिए, बताइए क्या लिखा है।
1: जी, लिखते हैं कि वर्ष 2011 में जापान में आए विनाशकारी महाभूकंप की स्मृतियां आज भी मन को विचलित कर देती हैं। कल इवाते प्रीफेक्चर के निकट समुद्र में आए 7.2 तीव्रता के भूकंप का समाचार जानकर भी चिंता हुई। हालांकि ये जानकर राहत मिली कि इस प्राकृतिक आपदा से किसी प्रकार की जन धन हानि नहीं हुई और संभावित संकट टल गया। ईश्वर से प्रार्थना है कि जापान सहित समस्त विश्व को ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखें।
0: सुरेश जी, आपकी शुभकामनाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल पता नहीं क्यों बहुत बड़े भूकंप आ रहे हैं, और उस दिन फुजी पर्वत के पास भी काफी बड़ा भूकंप आया, और क्योंकि फुजी पर्वत के पास टोक्यो है तो इसलिए हमें भी काफी बड़ा झटका महसूस हुआ ना।
1: हाँ, और समय रात 10:30 के आसपास था, तो हाँ, सोने ही जा रही थी मैं।
0: अच्छा,
1: ऐसे में अचानक मोबाइल पर अलर्ट बजने लगा और मुझे लगा कि इस बार कोई बड़ा भूकंप आ जाएगा।
0: हाँ, मोबाइल पर अलर्ट की आवाज से ही दिल की धड़कनें बढ़ जाती है ना। भूकंप से तो बाद में निपटते हैं, है ना?
1: अलर्ट से निपटते हैं। अच्छा, अब सुरेश जी का ये दूसरा पत्र है।
0: अच्छा,
1: हाँ, इसमें लिखते हैं कि 28 जून को चेरी के देश से के अंतर्गत दी गई जानकारी से मन प्रसन्न हो गया। ये जानकर मुझे तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ कि फुटबॉल विश्व कप के मैच समाप्त होने के बाद जापानी दर्शक स्वयं मैदान में बिखरे कचरे की सफाई करते हैं। वास्तव में अनुशासन, स्वच्छता, सामाजिक उत्तरदायित्व और नागरिक संस्कार का ऐसा अनुपम उदाहरण विश्व में शायद केवल जापान ही प्रस्तुत कर सकता है। दुर्भाग्यवश कुछ लोग इस विषय पर नकारात्मक टिप्पणियां करते हैं। ऐसे लोगों के प्रति मुझे केवल सहानुभूति होती है, क्योंकि वे जापान की संस्कृति, उसके नागरिक मूल्यों और वर्षों से विकसित सामाजिक चेतना से पूर्णतः अनभिज्ञ हैं। जापान ने अपने व्यवहार से ये सिद्ध कर दिया है कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक पहचान केवल उसकी आर्थिक या तकनीकी प्रगति से नहीं, बल्कि उसके नागरिकों के संस्कारों और सामूहिक उत्तरदायित्व से होती है। ये भी अत्यंत हर्ष का विषय है कि जापानी फुटबॉल टीम ने अपने उत्कृष्ट खेल, अनुशासन और जुझारूपन के बल पर विश्व कप के नॉकआउट चरण में स्थान बनाया है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए पूरी जापानी टीम तथा उसके समर्थकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
0: सुरेश जी, आपने सही जवाब दिया नकारात्मक टिप्पणियां करने वालों को। ये जापान की पूरी सभ्यता की पहचान है। बाकी लोग भी जापानी लोगों का अनुसरण कर रहे हैं और ये मिशन अगर फैलता जाए तो इसमें कोई बुराई तो नहीं।
1: और वायला जी, फेसबुक पर जापानी खिलाड़ियों की साफ सफाई की तस्वीरें भी तो वायरल हो रही हैं। जापानी फुटबॉल टीम ने मैच के दौरान जिस लॉकर रूम या कहें ड्रेसिंग रूम का इस्तेमाल किया था, उसे भी बिल्कुल चमचमाता छोड़ कर गए हैं।
0: और दुर्भाग्य से जापान ब्राजील से हार गया और विश्व कप से बाहर हो गया है, लेकिन टीम की मेहनत और लगन उसके अच्छे प्रदर्शन से जुड़ी हुई है ना। अच्छा कमाईनी जी, आप फेसबुक की कुछ टिप्पणियां ले लीजिए।
1: जी हाँ, क्यों नहीं।
0: तो कमाईनी जी, पिछले एक अंक में हमने माकी सुशी यानी सुशी के रोल बनाने की विधि सिखाई थी, तो इस पर उमेश कुमार शर्मा जी लिखते हैं कि इस व्यंजन को बनाने का अनुभव प्राप्त करना मेरे लिए सुखद क्षण होगा।
1: तो देर किस बात की उमेश जी, आज ही बनाए और अपने परिवार को परोसे
0: जी।
1: इसी पोस्ट पर मुरारी शाह, राजेश गिरी और लता पांडे ने लिखा है, बहुत ही सुंदर। साथ ही मुरारी शाह ने ये भी पूछा है कि क्या हिंदी सेवा बंद हो गई है, बताएं।
0: मुरारी जी, हिंदी सेवा बिल्कुल भी बंद नहीं हुई है। देखिए, आज भी हम आपकी सेवा में मौजूद हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर अनेक ऑडियो वीडियो सामग्री का आनंद ले सकते हैं। और अब समय हो रहा है हमारी फ्रीक्वेंसी की जानकारी देने का, तो कृपया नोट कर लीजिए हमारी फ्रीक्वेंसी।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
1: स्वागत है एक बार फिर से चेरी के देश से कार्यक्रम में। दोस्तों, अब समय है आओ पकाएं जापानी खाना का। वायला जी, श्रोताओं की अक्सर शिकायत रहती है कि हम जो व्यंजन सिखाते हैं वो अधिकतर मांसाहारी होते हैं।
0: हाँ, ये तो सही कहा आपने।
1: तो इस बार हम लेकर आ रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जो सब्जियों से बनाई जाती है। तो आइए सीखते हैं बनाना आगे बिताशी यानी सूप में डली तली सब्जियां।

0: आओ पकाएं जापानी खाना कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे जापानी व्यंजन आगे बिताशी। इसमें सिर्फ सब्जियों का इस्तेमाल होता है और इसे खाकर पेट भी अच्छी तरह भर जाता है।
1: और दोस्तों, ये व्यंजन सिखाने के लिए आज भी हमारे साथ हैं पाक कला विशेषज्ञ सुश्री आकिको वातानाबे।
2: कोन्निचिवा, वातानाबे आकिको देस। 今日ご紹介する揚げ浸しは、野菜を揚げた後、だしで作った。
0: Namaskar, main hoon Akiko Watanabe. Aaj jo vyanjan aap seekhne wale hain, uska naam hai aage bitashi. Isme hum kuch sabziyon ko talenge aur phir unhe dashi wale ek rasse mein dal denge. Talne se sabziyon ka rang khil uthta hai aur unse pet bhi jaldi bhar jata hai. ये व्यंजन मौसमी सब्जियां खाने का स्वादिष्ट तरीका है।
1: तो सबसे पहले नोट कर लीजिए चार लोगों के लिए ये व्यंजन बनाने की सामग्री। आपको चाहिए एक आलू, दो छोटे बैंगन, दो शिमला मिर्च और 100 ग्राम शिमेजी मशरूम।
0: ऊपर से सजाने के लिए आपको चाहिए 15 ग्राम अदरक और 100 ग्राम दाईकोन यानी बड़ी मूली।
1: और रसा बनाने के लिए तैयार रखिए एक कप दाशी स्टॉक, दो बड़े चम्मच सोया सॉस और एक छोटा चम्मच चीनी। इसके अलावा आपको मशरूमों पर लगाने के लिए थोड़ा सा मैदा भी चाहिए और तलने के लिए वनस्पति तेल।
0: दाशी स्टॉक कात्सुओ बुशी यानी भुनी हुई सूखी कात्सुओ मछली के कतलों से बनाई जाती है।
1: और अगर कात्सुओ बुशी उपलब्ध ना हो तो आप बने बनाए मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: तो चलिए अब व्यंजन बनाना शुरू करते हैं। पहले आलू छील लीजिए।
1: अब आलू के तिरछे गोल टुकड़े काटिए। इन टुकड़ों की मोटाई 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इनका व्यास लगभग 4 सेंटीमीटर रखने की कोशिश कीजिए। इसके बाद बैंगनों की डंठल काट दीजिए, फिर इनके लंबाई में 4 टुकड़े कर लीजिए।
0: अब हम शिमला मिर्च की पट्टियां काटेंगे। तो शिमला मिर्च के बीज निकाल दीजिए और उनकी लगभग 2 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टियां काट लीजिए।
1: अब शिमेजी मशरूमों की बारी। उनकी डंठल का सख्त निचला हिस्सा काट दीजिए, फिर मशरूमों को 3 या 4 के गुच्छों में बांट लीजिए। तलने वाली सब्जियां तैयार हो गई हैं। अब ऊपर से सजाने वाली सब्जियों की बारी है। पहले अदरक का छिलका उतारकर उसे कद्दूकस कर लीजिए। इसके बाद दाईकोन यानी बड़ी मूली का छिलका उतारिए और उसे भी कद्दूकस कर लीजिए।
0: मूली कद्दूकस करने के बाद उसे एक महीन छलनी में रख दीजिए ताकि उसमें से अतिरिक्त नमी झर जाए।
1: इसके बाद रसा बनाएंगे। इसके लिए एक कप दाशी स्टॉक में 2 बड़े चम्मच सोया सॉस और 1 छोटा चम्मच चीनी मिलाइए। चीनी घुलने तक सारी सामग्री को अच्छी तरह मिलाइए।
0: अब सब्जियां तलेंगे। इसके लिए आप डेगची या फ्राइंग पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डेगची या फ्राइंग पैन में पेंदे से 4 सेंटीमीटर ऊपर तक तेल डालिए और उसे गैस पर रख दीजिए।
1: जब तक तेल गर्म होता है, बैंगन और आलू एक छलनी में डालकर पानी निकाल दीजिए और उनके टुकड़ों को एक साफ कपड़े से थपथपाकर सुखा लीजिए।
2: यसाई वो आगेरु तो की ओंदो गा दाइजी देस। नस वा कोन दे आगेरु तो तोतेमो किदे दे ओइशिकु
0: शि। तलते समय तेल का तापमान सही होना बहुत जरूरी है। बैंगन को बहुत गर्म तेल में तलने से उसका रंग खिल उठता है और स्वाद भी निखर जाता है। लेकिन शिमला मिर्च और आलू थोड़े हल्के तापमान पर तलने चाहिए, नहीं तो वो बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे।
1: तो पहले वो सब्जियां तलिए जो ज़्यादा गर्म तेल में तलनी होती हैं। हम बैंगन से शुरू करेंगे। तेल का तापमान लगभग 170 से 175 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए।
0: बहुत गर्म तेल में तलने से बैंगन के सुंदर बैंगनी रंग में और चमक आ जाती है।
1: तो जब तेल सही तापमान तक गर्म हो जाए तब बैंगन के टुकड़े डाल दीजिए। अगर आप इनको ऐसे डालेंगे कि इनका छिलका नीचे की ओर हो तो इनका बहुत अच्छा रंग आएगा। बैंगन के टुकड़े सिर्फ 1 से 2 मिनट तलिए।
0: बैंगन के टुकड़ों का बैंगनी रंग बहुत सुंदर लग रहा है। कम तापमान पर तलने से ऐसी चमक नहीं आती।
1: लगभग एक मिनट के बाद कुछ टुकड़े चिमटी या चॉपस्टिक्स से उठाकर देखिए। अगर उन पर चॉपस्टिक्स या चिमटी का निशान बन जाता है तो इसका मतलब है कि वो तैयार हैं।
0: अब आप टुकड़ों को तेल से निकाल सकते हैं। निकालने के बाद उन पर लगा अतिरिक्त तेल जरूर हटा लीजिएगा। इसके बाद आलू तलने की बारी। तेल का तापमान लगभग 160 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जब तेल में चॉपस्टिक्स या चिमटी डालने पर बुलबुले उठने बंद हो जाएं, तब आलू के टुकड़े डालिए।
1: आलू के टुकड़े करीब 3 मिनट में पक जाएंगे। इस बीच शिमीजी मशरूमों पर थोड़ा मैदा लगा लीजिए।
2: किनोको वा तोतेमो सुइबुन गा ओई नोदे कोनो मामा आगेते शिमाउ तो बेचट्टो शिता कांजी नात्ते
0: शिमाउ। मशरूमों में बहुत सारी नमी होती है, इसलिए उन पर पहले मैदा लगाना चाहिए ताकि वो तलते समय पानी ना छोड़ें।
1: अब आलू के साथ

0: शिमला मिर्च भी तेल में डाल दीजिए। शिमला मिर्च की पट्टियों को पकने में सिर्फ 1 मिनट ही लगेगा। जब वो थोड़े पारदर्शी होने लगें तब उन्हें निकाल दीजिए।
1: अब आलू के टुकड़ों में सीक गाड़ कर देखिए कि वो पक गए हैं या नहीं। अगर सीक आसानी से गड़ जाए तो आलू के टुकड़े निकाल लीजिए।
0: आलू और शिमला मिर्च निकालने के बाद मैदा लगे शिमेजी मशरूम डालिए। शिमेजी मशरूम भी हम 160 डिग्री सेल्सियस तापमान में तल लेंगे।
1: शुरू में मशरूमों से बहुत सारे बुलबुले निकलेंगे। जब बुलबुले थोड़े कम हो जाएंगे तब मशरूम कुरकुरे होने लगेंगे।
0: लगभग 2 मिनट बाद बुलबुले उठने बंद हो जाएंगे और तेल से ज्यादा आवाज नहीं आएगी। अब मशरूम निकाल लीजिए।
1: सारी सब्जियां तलने के बाद उन्हें रसे में डालना है, तो रसा एक सपाट थाली या ट्रे में डालिए और उसमें सारी सब्जियां डाल दीजिए। बैंगन के टुकड़ों का छिलका ऊपर की ओर रखिए ताकि उनका रंग बना रहे।
0: तो अब जान लेते हैं ये व्यंजन परोसने का तरीका।
1: ये व्यंजन सबसे अच्छा तब दिखता है जब सब्जियां एक के ऊपर एक रखी हों, न कि साथ साथ। तो इन्हें एक के ऊपर एक सजा लीजिए। जैसे पहले आलू का एक गोल टुकड़ा रखिए और उसके ऊपर आलू का ही एक और टुकड़ा तिरछा करके रखिए।
0: दोस्तों, इससे आपका व्यंजन दिखने में बहुत सुंदर लगेगा। और आप चाहें तो इसे और सुंदर बनाने के लिए अलग अलग रंगों की सब्जियां साथ रख सकते हैं। अब सुनिए कि व्यंजन को और कैसे सजाना है।
1: कद्दूकस की हुई दाइकोन यानी बड़ी मूली और अदरक सजाते समय दाईं तरफ मूली का लगभग 2 सेंटीमीटर ऊंचा ढेर लगाइए और उसके बगल में रख दीजिए अदरक का छोटा सा ढेर।
0: सारी सामग्री थाली में सजाने के बाद सब्जियों के ऊपर से थोड़ा रसा डाल दीजिए। इससे उनमें चमक आ जाएगी। ध्यान रहे कि रसा कद्दूकस की हुई मूली और अदरक पर ना पड़े।
1: 今日は揚げびたしの作り方をご紹介しました。ぜひ身近にあるいろいろな野菜でお試しください。दोस्तों, आज आपने बनाना सीखा जापानी व्यंजन आगे बिताशी। उम्मीद है कि अपने आसपास मौजूद तरह तरह की सब्जियों से आप ये व्यंजन बनाकर जरूर देखेंगे।
2: कमानी जी, मैंने इसी कार्यक्रम से ये व्यंजन सीखा था और तब से गर्मियों में खास तौर से इसे बनाती आ रही हूँ और मेरे घर में सभी को ये बहुत पसंद है। कितना भी बनाओ कम ही पड़ जाता है।
3: हाँ, वैसे बनाने में काफी सरल है, मैं भी बनाकर देखती हूँ।
2: हाँ, और बैंगन वगैरह का बनाओ, कद्दू का बनाओ तो बहुत अच्छा बनता है
3: और वो तो गर्मियों में बहुत अच्छा होता है। ये सब्जियां तो गर्मियों के लिए बहुत अच्छी होती हैं।
2: बिल्कुल, अभी यही सब सब्जियां तो चल रही हैं।
3: हाँ, मैं बनाकर पक्का पक्का पक्का देखती हूँ
2: जी
3: और आप सबको खिलाती हूँ
2: जी। बिल्कुल,
3: अगर अच्छा बना तो अच्छा बना तो।
2: और दोस्तों, समय हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमें ढेर सारे पत्र लिखें और अगर पत्र लिखना झंझट लगता है तो फेसबुक पेज पर ही अपनी टिप्पणी आप डाल सकते हैं। तो इंतजार रहेगा आपकी टिप्पणियों का। और अब हमें दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। तब तक अनुमति दें वायला कमानो को
3: और कामायनी सिंह को।
2: सायोनारा, नमस्कार।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का उनके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। सबसे पहले स्वीकार करें वायला खवानो का कोनिचिवा नमस्कार।
1: आवाज की दुनिया के सभी साथियों को कामायनी सिंह का भी प्यार भरा नमस्कार कोनिचिवा। लेकर हाजिर हैं आपके पत्रों के जवाब और आओ पकाएं जापानी खाना।

0: कामायनी जी, देखिए जुलाई का महीना लगभग आधा बीत चुका है और अब बस मन कर रहा है कि गर्मियां शुरू हो जाएं, इस बारिश से छुटकारा मिले।
1: हाँ ये तो है, बरसात खत्म होने पर गर्मी तो होगी, लेकिन मनोरंजन के लिए समुद्र तट जा सकते हैं, पहाड़ों पर चढ़ सकते हैं, आतिशबाजी देख सकते हैं।
0: अरे हाँ, और देखिए 1 जुलाई से फुजी पर्वत पर चढ़ने का मौसम भी तो शुरू हो चुका है
1: जी,
0: और स्कूलों में जल्द ही छुट्टी भी होने वाली है, तो गर्मियों का पूरा मजा लिया जाएगा।
1: लेकिन आजकल पहले वाली गर्मियां नहीं रही, तापमान 40 डिग्री को छूने लगा है, इसलिए दिन में बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है।
0: हाँ, और वैसे तो आजकल भालुओं का भी आतंक है, तो सुनसान पहाड़ी इलाकों पर जाना खतरे से खाली नहीं है।
1: ये भी एक नई समस्या है आजकल, गर्मियों में कहाँ चले इस पर बाद में बात करते हैं। बहरहाल चलते हैं आज के पत्रों की ओर।
0: जी हाँ, तो देखिए ये सबसे पहले ये पत्र है रामकुमार नीरज जी का, आरा बिहार से।
1: क्या लिखते हैं?
0: और ये लिखते हैं कि हिंदी सेवा की वेबसाइट पर सैन्य हमले व व्यापार को लेकर तनाव के बीच मोदी और ट्रंप की मुलाकात रिपोर्ट पढ़ी, और सबसे पहले रिपोर्ट का शीर्षक पाठक को ये संकेत देता है कि भारत अमेरिका संबंधों में तनाव है, लेकिन खबर उस तनाव की गहराई, उसके कारणों और उसके संभावित प्रभावों पर बहुत कम प्रकाश डालती है। दूसरी बात, ओमान के निकट हुए हमले में 3 भारतीय नाविकों की मृत्यु का उल्लेख तो है, लेकिन रिपोर्ट में ये स्पष्ट नहीं किया गया कि हमले की जिम्मेदारी किस पर थी। रिपोर्ट का सबसे दिलचस्प हिस्सा ट्रंप की टिप्पणी है, जब उनसे मृत नाविकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए कहा गया तो उन्होंने केवल इतना कहा, ये एक कठिन पेशा है। ये उत्तर राजनीतिक रूप से सुरक्षित भले ही हो, लेकिन मानवीय दृष्टि से काफी फीका प्रतीत होता है। कुल मिलाकर ये रिपोर्ट सूचना तो देती है, लेकिन विश्लेषण कम करती है। ये घटना के तथ्यों को सामने रखती है, पर उसके पीछे छिपे शक्ति संतुलन, आर्थिक दबावों और कूटनीतिक असमानताओं पर गहराई से चर्चा नहीं करती।
1: रामकुमार जी, आपके पत्र के लिए आभार, आपने बहुत बारीकी से पूरी खबर का विश्लेषण किया है और अनकहे पहलुओं पर ध्यान आकर्षित किया है। आपका सवाल कि केवल तथ्यों को रखा गया और विश्लेषण को नहीं, इस पर हम कहना चाहते हैं कि ये केवल समाचार थे जिसमें घटनाक्रम को ज्यों का त्यों बताया गया।
0: शायद इसीलिए आपको खबर अधूरी सी लगी होगी, और इस पूरी मुलाकात के क्या मायने थे और इसके पीछे क्या इरादे थे, उस पर अगर कभी कोई सामयिकी या विश्लेषण होता है तो उस पर भी हम जरूर जानकारी देंगे। फिलहाल केवल एक समाचार की तरह इसे प्रस्तुत किया गया।
1: अब अगला पत्र है किसिंगा ओडिशा से सुरेश अग्रवाल जी का। दरअसल इनके 2 पत्र हैं।
0: अच्छा, तो दोनों ही ले लीजिए, बताइए क्या लिखा है।
1: जी, लिखते हैं कि वर्ष 2011 में जापान में आए विनाशकारी महाभूकंप की स्मृतियां आज भी मन को विचलित कर देती हैं। कल इवाते प्रीफेक्चर के निकट समुद्र में आए 7.2 तीव्रता के भूकंप का समाचार जानकर भी चिंता हुई। हालांकि ये जानकर राहत मिली कि इस प्राकृतिक आपदा से किसी प्रकार की जन धन हानि नहीं हुई और संभावित संकट टल गया। ईश्वर से प्रार्थना है कि जापान सहित समस्त विश्व को ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखें।
0: सुरेश जी, आपकी शुभकामनाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल पता नहीं क्यों बहुत बड़े भूकंप आ रहे हैं, और उस दिन फुजी पर्वत के पास भी काफी बड़ा भूकंप आया, और क्योंकि फुजी पर्वत के पास टोक्यो है तो इसलिए हमें भी काफी बड़ा झटका महसूस हुआ ना।
1: हाँ, और समय रात 10:30 के आसपास था, तो हाँ, सोने ही जा रही थी ना।
0: अच्छा,
1: ऐसे में अचानक मोबाइल पर अलर्ट बजने लगा और मुझे लगा कि इस बार कोई बड़ा भूकंप आ जाएगा।
0: हाँ, मोबाइल पर अलर्ट की आवाज से ही दिल की धड़कनें बढ़ जाती है ना। भूकंप से तो बाद में निपटते हैं, है ना?
1: अलर्ट से निपटते हैं। अच्छा, अब सुरेश जी का ये दूसरा पत्र है।
0: अच्छा,
1: हाँ, इसमें लिखते हैं कि 28 जून को चेरे के देश से के अंतर्गत दी गई जानकारी से मन प्रसन्न हो गया। ये जानकर मुझे तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ कि फुटबॉल विश्व कप के मैच समाप्त होने के बाद जापानी दर्शक स्वयं मैदान में बिखरे कचरे की सफाई करते हैं, वास्तव में अनुशासन, स्वच्छता, सामाजिक उत्तरदायित्व और नागरिक संस्कार का ऐसा अनुपम उदाहरण विश्व में शायद केवल जापान ही प्रस्तुत कर सकता है। दुर्भाग्यवश कुछ लोग इस विषय पर नकारात्मक टिप्पणियां करते हैं। ऐसे लोगों के प्रति मुझे केवल सहानुभूति होती है, क्योंकि वे जापान की संस्कृति, उसके नागरिक मूल्यों और वर्षों से विकसित सामाजिक चेतना से पूर्णतः अनभिज्ञ हैं। जापान ने अपने व्यवहार से ये सिद्ध कर दिया है कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक पहचान केवल उसकी आर्थिक या तकनीकी प्रगति से नहीं, बल्कि उसके नागरिकों के संस्कारों और सामूहिक उत्तरदायित्व से होती है। ये भी अत्यंत हर्ष का विषय है कि जापानी फुटबॉल टीम ने अपने उत्कृष्ट खेल, अनुशासन और जुझारूपन के बल पर विश्व कप के नॉकआउट चरण में स्थान बनाया है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए पूरी जापानी टीम तथा उसके समर्थकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
0: सुरेश जी, आपने सही जवाब दिया नकारात्मक टिप्पणियां करने वालों को। ये जापान की पूरी सभ्यता की पहचान है। बाकी लोग भी जापानी लोगों का अनुसरण कर रहे हैं और ये मिशन अगर फैलता जाए तो इसमें कोई बुराई तो नहीं।
1: और वायला जी, फेसबुक पर जापानी खिलाड़ियों की साफ सफाई की तस्वीरें भी तो वायरल हो रही हैं। जापानी फुटबॉल टीम ने मैच के दौरान जिस लॉकर रूम या कहें ड्रेसिंग रूम का इस्तेमाल किया था, उसे भी बिल्कुल चमचमाता छोड़कर गए हैं।
0: और दुर्भाग्य से जापान ब्राजील से हार गया और विश्व कप से बाहर हो गया है, लेकिन टीम की मेहनत और लगन उसके अच्छे प्रदर्शन से जुड़ी हुई है ना। अच्छा कमाईनी जी, आप फेसबुक की कुछ टिप्पणियां ले लीजिए।
1: जी हाँ, क्यों नहीं।
0: तो कमाईनी जी, पिछले एक अंक में हमने माकी सुशी यानी सुशी के रोल बनाने की विधि सिखाई थी, तो इस पर उमेश कुमार शर्मा जी लिखते हैं कि इस व्यंजन को बनाने का अनुभव प्राप्त करना मेरे लिए सुखद क्षण होगा।
1: तो देर किस बात की उमेश जी, आज ही बनाएं और अपने परिवार को परोसें।
0: जी
1: इसी पोस्ट पर मुरारी शाह, राजेश गिरी और लता पांडे ने लिखा है, बहुत ही सुंदर। साथ ही मुरारी शाह ने ये भी पूछा है कि क्या हिंदी सेवा बंद हो गई है, बताएं।
0: मुरारी जी, हिंदी सेवा बिल्कुल भी बंद नहीं हुई है। देखिए, आज भी हम आपकी सेवा में मौजूद हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर अनेक ऑडियो वीडियो सामग्री का आनंद ले सकते हैं। और अब समय हो रहा है हमारी फ्रीक्वेंसी की जानकारी देने का, तो कृपया नोट कर लीजिए हमारी फ्रीक्वेंसी।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
1: स्वागत है एक बार फिर से चेरी के देश से कार्यक्रम में। दोस्तों, अब समय है आओ पकाएं जापानी खाना का। वायला जी, श्रोताओं की अक्सर शिकायत रहती है कि हम जो व्यंजन सिखाते हैं वो अधिकतर मांसाहारी होते हैं।
0: हाँ, ये तो सही कहा आपने।
1: तो इस बार हम लेकर आ रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जो सब्जियों से बनाई जाती है। तो आइए सीखते हैं बनाना आगे बिताशी यानी सूप में डली तली सब्जियाँ।

0: आओ पकाएं जापानी खाना कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे जापानी व्यंजन आगे बिताशी। इसमें सिर्फ सब्जियों का इस्तेमाल होता है और इसे खाकर पेट भी अच्छी तरह भर जाता है।
1: और दोस्तों, ये व्यंजन सिखाने के लिए आज भी हमारे साथ हैं पाक कला विशेषज्ञ सुश्री आकिको वातानाबे।
2: कोनिचिवा, वातानाबे आकिको देसु। 今日ご紹介する揚げ浸しは、野菜を揚げた後、だしで作った。
0: Namaskar, main hoon Akiko Watanabe. Aaj jo vyanjan aap seekhne wale hain, uska naam hai aage bitashi. Isme hum kuch sabziyon ko talenge aur phir unhein dashi wale ek rasse mein dal denge. Talne se sabziyon ka rang khil uthta hai aur unse pet bhi jaldi bhar jata hai. ये व्यंजन मौसमी सब्जियां खाने का स्वादिष्ट तरीका है।
1: तो सबसे पहले नोट कर लीजिए चार लोगों के लिए ये व्यंजन बनाने की सामग्री। आपको चाहिए एक आलू, दो छोटे बैंगन, दो शिमला मिर्च और 100 ग्राम शिमेजी मशरूम।
0: ऊपर से सजाने के लिए आपको चाहिए 15 ग्राम अदरक और 100 ग्राम दाईकोन यानी बड़ी मूली।
1: और रसा बनाने के लिए तैयार रखिए एक कप दाशी स्टॉक, दो बड़े चम्मच सोया सॉस और एक छोटा चम्मच चीनी। इसके अलावा आपको मशरूमों पर लगाने के लिए थोड़ा सा मैदा भी चाहिए और तलने के लिए वनस्पति तेल।
0: दाशी स्टॉक कात्सुओबुशी यानी भुनी हुई सूखी कात्सुओ मछली के कतलों से बनाई जाती है।
1: और अगर कात्सुओबुशी उपलब्ध ना हो तो आप बने बनाए मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: तो चलिए अब व्यंजन बनाना शुरू करते हैं। पहले आलू छील लीजिए।
1: अब आलू के तिरछे गोल टुकड़े काटिए। इन टुकड़ों की मोटाई 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इनका व्यास लगभग 4 सेंटीमीटर रखने की कोशिश कीजिए। इसके बाद बैंगनों की डंठल काट दीजिए, फिर इनके लंबाई में 4 टुकड़े कर लीजिए।
0: अब हम शिमला मिर्च की पट्टियां काटेंगे। तो शिमला मिर्च के बीज निकाल दीजिए और उनकी लगभग 2 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टियां काट लीजिए।
1: अब शिमेजी मशरूमों की बारी। उनकी डंठल का सख्त निचला हिस्सा काट दीजिए, फिर मशरूमों को 3 या 4 के गुच्छों में बांट लीजिए। तलने वाली सब्जियां तैयार हो गई हैं। अब ऊपर से सजाने वाली सब्जियों की बारी है। पहले अदरक का छिलका उतारकर उसे कद्दूकस कर लीजिए। इसके बाद दाईकोन यानी बड़ी मूली का छिलका उतारिए और उसे भी कद्दूकस कर लीजिए।
0: मूली कद्दूकस करने के बाद उसे एक महीन छलनी में रख दीजिए ताकि उसमें से अतिरिक्त नमी झर जाए।
1: इसके बाद रसा बनाएंगे। इसके लिए एक कप दाशी स्टॉक में 2 बड़े चम्मच सोया सॉस और 1 छोटा चम्मच चीनी मिलाइए। चीनी घुलने तक सारी सामग्री को अच्छी तरह मिलाइए।
0: अब सब्जियां तलेंगे। इसके लिए आप डेगची या फ्राइंग पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डेगची या फ्राइंग पैन में पेंदे से 4 सेंटीमीटर ऊपर तक तेल डालिए और उसे गैस पर रख दीजिए।
1: जब तक तेल गर्म होता है, बैंगन और आलू एक छलनी में डालकर पानी निकाल दीजिए और उनके टुकड़ों को एक साफ कपड़े से थपथपाकर सुखा लीजिए।
3: यसायो आगेरु टोकी नो ओंदो गा दाइजी देसु।
0: तलते समय तेल का तापमान सही होना बहुत जरूरी है। बैंगन को बहुत गर्म तेल में तलने से उसका रंग खिल उठता है और स्वाद भी निखर जाता है। लेकिन शिमला मिर्च और आलू थोड़े हल्के तापमान पर तलने चाहिए, नहीं तो वो बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे।
1: तो पहले वो सब्जियां तलिए जो ज्यादा गर्म तेल में तलनी होती है। हम बैंगन से शुरू करेंगे। तेल का तापमान लगभग 170 से 175 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए।
0: बहुत गर्म तेल में तलने से बैंगन के सुंदर बैंगनी रंग में और चमक आ जाती है।
1: तो जब तेल सही तापमान तक गर्म हो जाए तब बैंगन के टुकड़े डाल दीजिए। अगर आप इनको ऐसे डालेंगे कि इनका छिलका नीचे की ओर हो तो इनका बहुत अच्छा रंग आएगा। बैंगन के टुकड़े सिर्फ 1 से 2 मिनट तलिए।
0: बैंगन के टुकड़ों का बैंगनी रंग बहुत सुंदर लग रहा है। कम तापमान पर तलने से ऐसी चमक नहीं आती।
1: लगभग एक मिनट के बाद कुछ टुकड़े चिमटी या चॉपस्टिक्स से उठाकर देखिए। अगर उन पर चॉपस्टिक्स या चिमटी का निशान बन जाता है तो इसका मतलब है कि वो तैयार हैं।
0: अब आप टुकड़ों को तेल से निकाल सकते हैं। निकालने के बाद उन पर लगा अतिरिक्त तेल जरूर हटा लीजिएगा। इसके बाद आलू तलने की बारी। तेल का तापमान लगभग 160 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जब तेल में चॉपस्टिक्स या चिमटी डालने पर बुलबुले उठने बंद हो जाएं, तब आलू के टुकड़े डालिए।
1: आलू के टुकड़े करीब 3 मिनट में पक जाएंगे। इस बीच शिमीजी मशरूमों पर थोड़ा मैदा लगा लीजिए।
3: किनोको वा तोतेमो सुइबुन गा ओई नोदे कोनो मामा अगेते शिमाउ तो बेचट्टो शिता कांजी नात्ते
0: शिमाउ। मशरूमों में बहुत सारी नमी होती है, इसलिए उन पर पहले मैदा लगाना चाहिए ताकि वो तलते समय पानी ना छोड़ें।
1: अब आलू के साथ शिमला मिर्च भी तेल में डाल दीजिए। शिमला मिर्च की पट्टियों को पकने में सिर्फ 1 मिनट ही लगेगा। जब वो थोड़े पारदर्शी होने लगें तब उन्हें निकाल दीजिए।
0: अब आलू के टुकड़ों में सीक गाड़ कर देखिए कि वो पक गए हैं या नहीं। अगर सीक आसानी से गड़ जाए तो आलू के टुकड़े निकाल लीजिए।
1: आलू और शिमला मिर्च निकालने के बाद मैदा लगे शिमेजी मशरूम डालिए। शिमेजी मशरूम भी हम 160 डिग्री सेल्सियस तापमान में तल लेंगे।
0: शुरू में मशरूमों से बहुत सारे बुलबुले निकलेंगे। जब बुलबुले थोड़े कम हो जाएंगे तब मशरूम कुरकुरे होने लगेंगे।
1: लगभग 2 मिनट बाद बुलबुले उठने बंद हो जाएंगे और तेल से ज्यादा आवाज नहीं आएगी। अब मशरूम निकाल लीजिए।
0: सारी सब्जियां तलने के बाद उन्हें रसे में डालना है, तो रसा एक सपाट थाली या ट्रे में डालिए और उसमें सारी सब्जियां डाल दीजिए। बैंगन के टुकड़ों का छिलका ऊपर की ओर रखिए ताकि उनका रंग बना रहे।
1: तो अब जान लेते हैं ये व्यंजन परोसने का तरीका।
2: できるだけ立体的に盛った方がいいので、平らに並べるのではなく、同じ素材をちょっと重ねて。
0: ये व्यंजन सबसे अच्छा तब दिखता है जब सब्जियां एक के ऊपर एक रखी हों, न कि साथ साथ। तो इन्हें एक के ऊपर एक सजा लीजिए, जैसे पहले आलू का एक गोल टुकड़ा रखिए और उसके ऊपर आलू का ही एक और टुकड़ा तिरछा करके रखिए।
1: दोस्तों, इससे आपका व्यंजन दिखने में बहुत सुंदर लगेगा। और आप चाहें तो इसे और सुंदर बनाने के लिए अलग अलग रंगों की सब्जियां साथ रख सकते हैं। अब सुनिए कि व्यंजन को और कैसे सजाना है।
3: दाइकों वा ताकासा 2 सेंची गुराई नो चोट्टो चीसाना यामा नी कागाची ओ टोटोनाएते ओइते ज़ाइरियो नो मिगीमा।
0: कद्दूकस की हुई दाइकोन यानी बड़ी मूली और अदरक सजाते समय दाई तरफ मूली का लगभग 2 सेंटीमीटर ऊंचा ढेर लगाइए और उसके बगल में रख दीजिए अदरक का छोटा सा ढेर।
1: सारी सामग्री थाली में सजाने के बाद सब्जियों के ऊपर से थोड़ा रसा डाल दीजिए, इससे उनमें चमक आ जाएगी। ध्यान रहे कि रसा कद्दूकस की हुई मूली और अदरक पर ना पड़े।
2: 今日は揚げびたしの作り方をご紹介しました。ぜひ身近にあるいろいろな野菜でお試しください。
0: दोस्तों, आज आपने बनाना सीखा जापानी व्यंजन आगे बिताशी। उम्मीद है कि अपने आसपास मौजूद तरह तरह की सब्जियों से आप ये व्यंजन बनाकर जरूर देखेंगे।
4: कमानी जी, मैंने इसी कार्यक्रम से ये व्यंजन सीखा था और तब से गर्मियों में खास तौर से इसे बनाती आ रही हूँ और मेरे घर में सभी को ये बहुत पसंद है। कितना भी बनाओ कम ही पड़ जाता है।
5: हाँ, वैसे बनाने में काफी सरल है, मैं भी बनाकर देखती हूँ।
4: हाँ, और बैंगन वगैरह का बनाओ, कद्दू का बनाओ तो बहुत अच्छा बनता है
5: और वो तो गर्मियों में बहुत अच्छा होता है। ये सब्जियां तो गर्मियों के लिए बहुत अच्छी होती हैं।
4: बिल्कुल, अभी यही सब सब्जियां तो चल रही हैं।
5: हाँ हाँ, मैं बनाकर पक्का पक्का पक्का देखती हूँ
4: जी
5: और आप सबको खिलाती हूँ
4: जी। बिल्कुल,
5: अच्छा बना दो, अच्छा बना दो।
4: और दोस्तों, समय हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमें ढेर सारे पत्र लिखें और अगर पत्र लिखना झंझट लगता है तो फेसबुक पेज पर ही अपनी टिप्पणी आप डाल सकते हैं। तो इंतजार रहेगा आपकी टिप्पणियों का। और अब हमें दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। तब तक अनुमति दें वायला कवानों को
5: और कामायनी सिंह को।
4: सायोनारा, नमस्कार, नमस्कार।

0: कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें। आइए दीवान खाना में चलें।
1: ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, वसीमा आबिद और खदीजा शाह।
2: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामईन को आदाब। भाई वसीमा, गर्मी बहुत बढ़ गई है, घरों के अंदर भी लू लगने के वाकयात हो रहे हैं।
1: हाँ, जापान की गर्मी पाकिस्तान से मुख्तलिफ है, यहाँ नमी काफी ज्यादा है।
0: असल में जापान के इर्द गिर्द समंदर जो है, खलील साहब, इसीलिए हवा में नमी भी काफी ज्यादा है और पसीना जल्दी खुश्क ही नहीं होता।
1: मैं दूसरी बार जापान आया हूँ लेकिन अभी तक जापान की गर्मी का आदि नहीं हो पाया।
2: वैसे कहते हैं कि गर्मियों में जापान के लोग पाको हिंद की तरह के तीखे खाने बहुत शौक से खाते हैं।
1: जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने इस हफ्ते गालिब हुसैन साहब का इंटरव्यू किया है जो टोक्यो में गुज़िश्ता 4 दहाइयों से हलाल फूड के कारोबार से वाबस्ता हैं।
0: समय सिलसिला है जापान में पाकिस्तानी।
1: मैंने इंटरव्यू के आगाज में उनसे पूछा कि उन्होंने इस कारोबार का आगाज कब किया और उस दौर में मार्केट की सूरत हाल क्या थी, तो उन्होंने बताया।
3: ये 1987 की बात है कि वो मैंने जो हलाल फूड है इसकी इब्तिदा जो 1987 में की थी। वो एक ऐसा ज़माना था कि जिस ज़माने में जापान के अंदर जो हलाल खाने के लिए कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ मैसर नहीं थी। बड़ा एक 1.5 साल का ऐसा बड़ा मुश्किल गुजारा है, लेकिन अल्लाह का ये करम हुआ कि अल्लाह ने यही हिम्मत दी तो हम इसी काम में आ गए। तो दिन ब दिन वो सिलसिला जो आगे बढ़ता गया और बाद में आने वाले लोगों के लिए आसानी हो रही।
4: तो उस दौर में हलाल की क्या सूरत हाल थी? बिल्कुल ही टोक्यो में अवेलेबल नहीं था या दूर जाना पड़ता, क्या सूरत?
3: देखिए जी, उस वक्त तो बिल्कुल जापान के अंदर हलाल, आप क्या बोलते हैं, बल्कि वेजिटेरियन चीज़ें भी आपको, दालें, मसाला जात, वो भी यहाँ पर नहीं मिलते थे। हमारा ये वो ज़माना ये था कि हम 3 टाइम यहाँ पर डबल रोटी खाया करते थे, उसको टोस्ट करके खाते थे। और सबसे ज़्यादा जो हमारी गज़ा होती थी वो अंडे और आलू, इस टाइप की चीज़ें जो है वो ज़्यादा हुआ करती थी। तो जापान के अंदर उस वक्त बिल्कुल कहीं भी हलाल जो है वो अवेलेबल नहीं था। कुछ चंद एक लोग जो कि किसी के गांव वगैरह में रहते थे, वहाँ पर अगर उनको कुछ मुर्गी वगैरह, चिकन नज़र आ जाए तो वहाँ पर उस एरिया में को खुद अपने हाथ से स्लॉटर करके अपने साथ इस्तेमाल किया, लेकिन उस वक्त कम्यूनिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी।
4: कारोबार में ऊंच नीच तो आती रहती हैं, तो कौन सा वक्त है, कौन सा दौर है जो आप समझते हैं कि वो आपके लिए सबसे मुश्किल था और आप उस मुश्किल वक्त से कैसे निकले?
3: देखिए, कारोबार में तो ये मुश्किलें तो आती रहती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक तो ये था कि हम ग्रेजुअली आस्ता आस्ता इसको बढ़ा रहे थे, एकदम उसको बढ़ाने की कोशिश नहीं की। आप कोरोना का ज़माना, जब कोरोना आया उस वक्त का आप बोल सकते हैं कि हमारी बहुत सारी चीज़ें जो है वो जापान में नहीं आ पा रही थी और लेट हो रही थी। वो ज़माना जो है वो थोड़ा सा वो मुश्किल था, बल्कि उसी ज़माने में ओलंपिक गेम्स थी जापान में, तो ओलंपिक्स गेम के अंदर हमारा हमसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट ने जाना था, कमिटमेंट हुई हुई थी और उस वो हमने इंपोर्ट भी की हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कैंसिल होगी। कैंसिल होने से हमें थोड़ा सा वो दबाव ज़रूर आया, लेकिन हमने दूसरी मार्केट में उनको निकाल दिया। उसके बाद 1 साल के बाद ओलंपिक हुई तो कुछ चीज़ें जो है वो उसमें भी निकल आई। में
4: अगर हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान और जापान को, तो पाकिस्तान में कारोबार करना जापान में कारोबार करने से कैसे मुख्तलिफ है?
3: पाकिस्तान में भी कारोबार करना ही ऐसा ही है जैसे जापान में, कोई ख़ास इतनी मुख्तलिफ तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पर हर चीज़ जो एक सिस्टम के अंदर होती है वहाँ पर भी है, अल्लाह का शुक्र है।
4: ये रेस्टोरेंट का बिज़नेस आप अगर यहाँ कर रहे हैं तो कैसे मुख्तलिफ है, यही बिज़नेस अगर आप पाकिस्तान में करते तो कैसे करते?
3: देखिए, रेस्टोरेंट के बिज़नेस के लिए ये है कि यहाँ पर करने से मुझे खुशी ये होती है कि जब लोग यहाँ पर दरवाजे पर आते हैं तो उनको हलाल नज़र आता है तो वो बहुत खुश होते हैं, कहते हैं अच्छा ये हलाल चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये जापान का, जिस रेस्टोरेंट में आप बैठकर मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, ये जापान का पहला हलाल रेस्टोरेंट है, सेम लाइक जैसे हलाल फूड का भी पहला सिलसिला था, ये 1990 में शुरू हुआ था।
4: तो पाकिस्तान में कैसे शिफ्ट हुए?
3: देखिए, उसमें ये ना कि ऑफकोर्स हम फूड का काम था, फूड के ऊपर ही कर रहे थे, तो जहरी बात है कि लोगों को वो पका पकाया खाना जो है वो तो नहीं मिलता था, और हमने कहा अच्छा हम बिल्कुल ओरिजिनल पाकिस्तानी खाना लोगों को दें। हमने रेस्टोरेंट का नाम भी मरहबा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट रखा, और उस वक्त भी लोग कहते थे ये कि इंडियन ना लगाएं, साथ लगाएं, इंडियन खाना जो है यहाँ पर जाना जाता है, पाकिस्तानी खाना नहीं जाना जाता। लेकिन میں نے انہوں نے بولا کہ دیکھیں انڈین بھی کسی نے شروع کیا تھا تو لوگوں نے جانا جانا, اور آپ پاکستانی میں ہم شروع کریں گے ہی اب تو تب ہی لوگ جانیں گے, اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستانی کھانا جو کیسا ہوتا ہے.
4: تو ابھی آپ کے تقریباً کچھ 4 دہائیوں سے آپ یہ کام کر رہے ہیں, اب ٹوکیو چونکہ تقریباً ایک مرکز بن چکا ہے کثیر ثقافتی کھانوں کا, کوئی بھی کھانا آپ کہیں سے بھی آرڈر کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں, تو آپ کے تجربے کی بنیاد پہ آپ کیا سمجھتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جاپان کے لوگوں میں حلال فوڈ کے بارے میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ان کی سمجھ بوجھ میں اضافہ ہو رہا ہے, اور آپ کے جو کسٹمرز ہیں جاپانی کسٹمرز ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے یا وہ کم ہو رہے ہیں؟
3: جاپانی لوگ بھی نا یہ ڈفرینٹ کنٹریز کے کھانے کھانا پسند کرتے ہیں, جب انڈین کھانے جو وہ کھاتے تھے تو پہلے تو وہ سارے وہ لوگ آئے, پھر آہستہ آہستہ آہستہ جب ان کو ایک چیز پتہ چلتی گئی, پھر زیادہ جو ہے جب یہ سوشل میڈیا کا زمانہ شروع ہوا, جس زمانے میں ہم نے شروع کیے یہ چیزیں اس وقت تو یہ سلسلے نہیں ہوا کرتے تھے, لیکن ایک آہستہ آہستہ جب یہ سوشل میڈیا کا دور آیا تو اس میں ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پتہ چلنا شروع ہوا, تو اور بہت اچھا
4: بڑھنا شروع ہو گیا. اچھا, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جاپان کے کاروباری ماحول میں آپ کیا تبدیلی محسوس کر رہے ہیں؟ آج کاروبار کرنا 4 دہائیاں پہلے کاروبار کرنے سے کیسے مختلف ہے؟
3: دیکھیے بہت زیادہ اس میں کوئی مختلف چیزیں نہیں ہیں, لیکن اب آج کل کے لیے یہ ہے کہ لیبر جو ہے نا وہ اس کی شارٹیج جو وہ محسوس ہوتی رہتی ہے, لیبر جو ہے اسپیشلی جاپنیز جو ہے وہ ہمیں لیبر جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتی, وہ تھوڑی ہمیں ایک پریشانی جو ہے وہ رہتی ہے, تو اس
4: پہلے ہوتی تھی
3: جی پہلے بہتر تھا, پھر بھی اب جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں, ایون آپ جاپان کے اندر بھی دیکھیں ہر طرف جو فارنر جو ہیں وہ بہت زیادہ غیر ملکی آئے ہوئے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی اپنی جو ہے وہ لیبر جو شارٹیج ہے اس کی وجہ سے.
4: اچھا غالب صاحب, حالیہ دنوں میں حکومت نے بزنس مینیجر ویزا کی شرائط میں سختی کی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا پاکستانی جو کمیونٹی پہ ہے اس پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟
3: دیکھیے بزنس مینیجر ویزا کے لیے جو کیپٹل کا مین اس میں ایک ایشو ہے, جاپنیز امپلائی کا ایشو ہے, جاپنیز امپلائی ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں,

0: हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के पास तकरीबन और जो ही मौजूद हैं। कैपिटल जो है वो लोगों ने पहले से ही काफ़ी हद तक लोगों ने इंक्रीज़ किया हुआ है। हमारे लोग गाड़ियों का काम करते हैं और बड़ा अच्छा हैंडसम काम करते हैं। फिर हमारे लोग जो है परमानेंट रेजिडेंट्स भी बहुत हैं, जपनीज़ फैमिली वाले लोग बहुत हैं, तो उनके ऊपर मैं तो इस वीज़े से अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी के ऊपर तो कोई ज़्यादा कोई असर नहीं देखता। ऑलमोस्ट लोग जो है वो सेटल ही हैं, मतलब कि वो कर रहे हैं
1: शरायत को पूरा कर,
0: जो शरायत जो है वो पूरी कर रहे हैं। तो वो तो ज़ाहिर है, पर जब जिस मुल्क में हम रह रहे हैं उसकी शरायत को तो हमें मानना पड़ेगा, उसके मुताबिक ही चलना है, ये तो हमारे लिए ज़रूरी है।
1: अच्छा, अब कुछ पर्सनल लाइफ की तरफ आते हैं। आप तकरीबन 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसा जापान में रह रहे हैं, तो कुछ ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कोई दिलचस्प वाक़ियात, कोई आपके यादें हों?
0: हम तो कहते हैं जैसे वो हलाल खाते भी हैं तो, और यहाँ पर मेहनत भी ऐसे ही करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि अरे हमारे पास सच्ची जो बात है कि फैमिली के लिए वक्त यहाँ नहीं निकलते। वो हम वो कहते थे कायद अजम साहब ने फरमाया था काम काम और फिर काम, तो वो जापान वालों ने सुन रहे हैं और जापान में ये होता है काम काम, तो हम भी ज़ाहिर है इस कम्युनिटी के, जापान हमारा दूसरा मुल्क है, हम जापान से भी इतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी अपने मुल्क पाकिस्तान से भी मोहब्बत करते हैं।
1: अच्छा, जापान की कोई ऐसी चीज़ जिसको देख के आपको लगता है काश ये पाकिस्तान में मैसर होती?
0: जापान के अंदर जो सफाई सुथराई जो है वो हमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, सच्ची जो बात है। इस किस्म की चीज़ें जो है वो पाकिस्तान में नहीं होना, जैसे हमारे पंजाब में तो अलहमदिल्ला शुरू हो गया है, काफ़ी हद तक हमें वहाँ पर क्लीननेस नज़र आती है। तो ये चीज़ जो है वो ज़ाहिर है हमें थोड़ी सी वो आती है कि हमारे मुल्क में भी वो ऐसे ही वो सारी चीज़ें हों तो नहीं
1: कैसे
0: आता है।
1: हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं पाकिस्तान में, आपका क्या ख्याल है? इस सफाई को
0: लेकिन
1: ही अगर हम
0: ये
1: ले
0: देखें
1: लें तो पाकिस्तान में इसको कैसे, हालांकि हमारे तो मजहब में भी सफाई नस्फ ईमान
0: शत्रु
1: है।
0: निमान है, जी
1: जी
0: जी उसके लिए यही है कि मेहनत को जो है ना बचपन से ही सिखाना बच्चों को बड़ा ज़रूरी है,
1: स्कूल लेवल,
0: जैसे स्कूल स्कूल से मैं तो कहता हूँ किंडर गार्डन से भी वो सिखाना, और यहाँ पर ये ऐसे होता है जापान में ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपकी फर्स्ट क्लास जो किंडर गार्डन में आप जाते हैं 1.5 साल के गए 2 साल, वहाँ से ही आपको सिखाना शुरू कर दिया जाता है। तो फिर ये है कि वो अपना दम अपने साथ उसको चीज़ को जो है वो अगर हम ऐसे अपनाते जाएंगे तो हमने ये नहीं सोच रहे कि मुल्क नहीं करना है, सबसे पहले मैंने अपने आप को ठीक करना है, तो उससे फिर आगे जो है वो सारी कौम भी वो ठीक होती जाएगी। तो उस चीज़ को ज़्यादा जो अपनाने की ज़रूरत है, मैं तो ये कहूँगा।
1: अच्छा, आप आखिर में ये बताइए कि वो नौजवान जो जापान में बिज़नेस करना चाह रहे हैं या शुरू कर चुके हैं, अपने तजुर्बे की बुनियाद पे आप उनको क्या मशवरा देंगे?
0: देखिए जी, सबसे तो ज़रूरी है कि जी जापान के अंदर जो है वो इंग्लिश भी चलती आजकल चलती है, कुछ ज़माने में पहले नहीं होती थी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि वो जापानी ज़बान को अच्छे तरीके से सीखें, उसके ऊपर फुल आपका अबूर होना चाहिए जापानी ज़बान के ऊपर, और उसको सिर्फ काम के लिए नहीं, शौक से उसको सीखें कि ताकि आप यहाँ पर आएँ तो आपको कारोबार करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। तो देखिए जिस दुनिया में जिस जगह भी आप रहते हैं, अगर आप मेहनत करने वाले बंदे हैं तो आप कामयाब ज़रूर होंगे। तो अपने मुल्क भी होते हैं वहाँ पर तो अपनी ज़बान है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो जब ज़बान नहीं आती तो आपको काफ़ी मुश्किल देखनी पड़ती है। लिहाजा आप जापान में आ रहे हैं या आएंगे या मौजूद हैं, आप जापानी ज़बान को दिन ब दिन इम्प्रूव करें, और ये मज़ेदार ज़बान भी है, मज़ा भी आता है इसको सीखने में।
1: बहुत शुक्रिया गालिब साहब,
0: थैंक यू
1: सो मच, बहुत शुक्रिया
2: जी। ये थे जनाब गालिब हुसैन।
3: खदीजा, आपको भी याद होगा कि लगभग 2 या 3 दहाइयां पहले सिर्फ टोक्यो या चंद एक मकामात पर ही हलाल दुकानें थीं, और होकाइडो और जैसे दूरदराज प्रीफेक्चरों में मुकीम मुसलमान यहीं से पार्सल मंगवाते थे।
2: जी बिल्कुल, हम भी महीने में 1 या 2 बार तो वैसे सभी का हलाल फूड तो ज़रूर जाना होता है। अच्छा, जापान की मुसलमान आबादी के लिए हलाल कारोबार वालों की बड़ी खदमात हैं।
3: अच्छा खदीजा, एक तो हलाल फूड की दस्तियाबी पहले की नस्बत बड़ी आम हो गई है, और खलील साहब आपको बताऊं कि अब इसके अलावा थाईलैंड और वियतनाम जैसे एशियाई ममालिक के खाने पीने पहले की नस्बत बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, और उनकी मार्केट भी बड़ी फैल रही है। तो आजकल ऐसे ही आज ऐसे ही लोगों को हराज तहसीन पेश करने के लिए हम गीत सुनवा रहे हैं।
2: अरिगतो अरिगतो, यानी शुक्रिया शुक्रिया। इसको पेश करने वाले हैं ताकाया कावासाकी।
3: ताकाया कावासाकी 1995 में जापान के तोचीगी प्रीफेक्चर में पैदा हुए।
4: उन्होंने अपनी मुनफरिद भारी आवाज के जज्बाती इर्तआश और यादगार धुनों से सामीन को महसूर कर दिया।
3: उनका ब्रेक थ्रू गाना माहो नो जुतान यानी जादुई कालीन 2020 में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और अब तक 400 मिलियन से ज्यादा स्ट्रीम्स हासिल कर चुका है।
4: 300 ملین سے زائد اسٹریمز لینے پر اس گانے کو جاپان کی ریکارڈنگ انڈسٹری ایسوسی ایشن کی جانب سے ٹرپل پلاٹینیم سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔
2: 2025 کے ان کے ملک گیر ہال ٹور مدا یومے نوناکا نے 30,000 شرکاء کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کے بعد کاواساکی نے 2026 میں اوساکا جو ہال اور نپون بودوکان میں مزید شوز کیے، جو ان کے کیریئر کے اب تک کے سب سے بڑے ہیڈ لائن کنسرٹس تھے۔
4: ہمارے عملے کی جاپانی رکن اراتا صاحبہ بتاتی ہیں کہ آریگاتو آریگاتو دہرانے سے، یعنی شکریہ شکریہ کہنے سے لگتا ہے کہ یہ دل سے نکلا محبت بھرا گانا ہے۔ یہ گیت اس چیلنج کے بارے میں ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کے لیے انتہائی شکر گزاری اور محبت کا اظہار کریں جو آپ کے لیے سب کچھ ہے۔
3: راتا صاحبہ کہتی ہیں، گیت کے بولوں کا راوی عام لمحات اپنے پیارے کے ساتھ گزارتا ہے۔ عام لمحات یعنی گھر کی طرف چلنا، آج کیا پکے گا جیسے موضوع پر بات کرنا، یا مستقبل میں سیر کے لیے کہاں جانا ہے، اور پرسکون روزمرہ تجربات ایک دوسرے کو بتاتے ہوئے گزارے جانے والے عام لمحات۔ یہ بظاہر سادہ لمحات کسی فلم کے مناظر کی طرح غیر معمولی لگتے ہیں، کیونکہ وہ عزیز جان شخص آپ کی زندگی میں محبت اور خوشی لاتا ہے۔
2: گیت کا راوی بولوں میں اپنے جذبات کو بیان کرنے کے لیے شکریہ سے بڑا کوئی لفظ تلاش کرتا لگتا ہے، اگرچہ اس کا دل جذبات سے معمور ہیں، لیکن اسے ہر اظہار ناکافی سا لگتا ہے۔ جو بے پناہ شکر گزاری اور محبت وہ محسوس کرتا ہے، اس کی شدت سے اس کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔
4: گیت کا مرکزی خیال کسی خاص شخص کے ساتھ گزاری جانے والی روزمرہ زندگی کی خوبصورتی کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، اور یہ خیال سامنے لاتا ہے کہ سب سے سادہ لفظ شکریہ، یہ صرف 5 حرفی لفظ، کبھی کبھار سب سے شدید جذبات لا سکتا ہے۔
3: گیت کے بولوں میں ایسے الفاظ کی تلاش کا ذکر ہے جو آریگاتو یعنی شکریہ سے آگے جائیں، یعنی اس سے بھی کہیں زیادہ وسیع مفہوم کے حامل ہوں۔ تو آئیے سنتے ہیں۔

0: कोई घर चाहिए
1: खुल के बोले
2: नहीं नहीं भैया हम नहीं ला सकते, बड़ा वजन होता है, बहुत ही भारी होता है।
3: अच्छा जिस हलाल फूड का जिक्र है उसकी कुछ चीजें पकाने के लिए हम प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हैं, खदीजा उस पे लतीफा सुनाओ।
1: प्रेशर कुकर में लतीफा भाई
0: सुनाइए सुनाइए सुनाइए प्लीज।
3: अरे प्रेशर कुकर पे लतीफा मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया है खदीजा, सुनाओ फिर से सुनाओ।
2: अरे हाँ भाई सुनाओ ना
3: भाई। एक मासूम बच्चे ने अपनी वालिदा से कहा, अम्मी अम्मी जो प्रेशर कुकर आप इस्तेमाल करती हैं वो तो मुझे गुस्से वाला पतीला लगता है, शू शू शू करता। माँ ने जवाब दिया, बेटा जी गुस्से वाला तो बिल्कुल नहीं है ये प्रेशर कुकर, ये तो ऐसा पतीला है जो तपती आग पर बैठकर भी सीटियां बजाता रहता है।
0: अच्छा यानी इन सीटियों में ये पैगाम होता है कि उसे वहां तक लोगों को खिलाया जाए जहां तक ये आवाज आ रही है।
2: अच्छा मैं लाएंगे लाएंगे जरूर लाएंगे
3: लाएंगे। लेकिन घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि इजाजत लेने का वक्त आन पहुंचा है, लेकिन मैं छोटा सा जिक्र कर चलूं कि जापानी बोलचाल के प्रोग्राम आइए जापानी बोले का क्विज जापानी जुबानदानी शुरू हो चुका है।
0: आप हमारे होम पेज nhk.jp/urdu के तवसुत से ईमेल रवाना कर सकते हैं। आप इसके जरिए प्रोग्राम सुनने के अलावा अपनी आरा भी रवाना कर सकते हैं। होम पेज का एड्रेस है nhk.jp/urdu।
3: इसके साथ ही अब हमें इजाजत दीजिए।

ラワウェラワウェヨーナウザズンベラワ

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का उनके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। सबसे पहले स्वीकार करें वायला खवानो का कोनिचिवा नमस्कार।
1: आवाज की दुनिया के सभी साथियों को कामायनी सिंह का भी प्यार भरा नमस्कार कोनिचिवा। लेकर हाजिर हैं आपके पत्रों के जवाब और आओ पकाएं जापानी खाना।
0: कामायनी जी, देखिए जुलाई का महीना लगभग आधा बीत चुका है और अब बस मन कर रहा है कि गर्मियां शुरू हो जाएं, इस बारिश से छुटकारा मिले।
1: हाँ, ये तो है, बरसात खत्म होने पर गर्मी तो होगी, लेकिन मनोरंजन के लिए समुद्र तट जा सकते हैं, पहाड़ों पर चढ़ सकते हैं, आतिशबाजी देख सकते हैं।
0: अरे हाँ, और देखिए 1 जुलाई से फुजी पर्वत पर चढ़ने का मौसम भी तो शुरू हो चुका है
1: जी।
0: और स्कूलों में जल्द ही छुट्टी भी होने वाली है, तो गर्मियों का पूरा मजा लिया जाएगा।
1: लेकिन आजकल पहले वाली गर्मियां नहीं रही, तापमान 40 डिग्री को छूने लगा है, इसलिए दिन में बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है।
0: हाँ, और वैसे तो आजकल भालुओं का भी आतंक है।
1: हाँ,
0: तो सुनसान पहाड़ी इलाकों पर जाना खतरे से खाली नहीं है।
1: हाँ, ये भी एक नई समस्या है आजकल, गर्मियों में कहाँ चले इस पर बाद में बात करते हैं। बहरहाल चलते हैं आज के पत्रों की ओर।
0: जी हाँ, तो देखिए ये सबसे पहले ये पत्र है राम कुमार नीरज जी का, आरा बिहार से।
1: क्या लिखते हैं?
0: और ये लिखते हैं कि हिंदी सेवा की वेबसाइट पर सैन्य हमले व व्यापार को लेकर तनाव के बीच मोदी और ट्रंप की मुलाकात रिपोर्ट पढ़ी। और सबसे पहले रिपोर्ट का शीर्षक पाठक को ये संकेत देता है कि भारत अमेरिका संबंधों में तनाव है, लेकिन खबर उस तनाव की गहराई, उसके कारणों और उसके संभावित प्रभावों पर बहुत कम प्रकाश डालती है। दूसरी बात, ओमान के निकट हुए हमले में 3 भारतीय नाविकों की मृत्यु का उल्लेख तो है, लेकिन रिपोर्ट में ये स्पष्ट नहीं किया गया कि हमले की जिम्मेदारी किस पर थी। रिपोर्ट का सबसे दिलचस्प हिस्सा ट्रंप की टिप्पणी है, जब उनसे मृत नाविकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने केवल इतना कहा, ये एक कठिन पेशा है। ये उत्तर राजनीतिक रूप से सुरक्षित भले ही हो, लेकिन मानवीय दृष्टि से काफी फीका प्रतीत होता है। कुल मिलाकर ये रिपोर्ट सूचना तो देती है, लेकिन विश्लेषण कम करती है। ये घटना के तथ्यों को सामने रखती है, पर उसके पीछे छिपे शक्ति संतुलन, आर्थिक दबावों और कूटनीतिक असमानताओं पर गहराई से चर्चा नहीं करती।
1: राम कुमार जी, आपके पत्र के लिए आभार, आपने बहुत बारीकी से पूरी खबर का विश्लेषण किया है और अनकहे पहलुओं पर ध्यान आकर्षित किया है। आपका सवाल कि केवल तथ्यों को रखा गया और विश्लेषण को नहीं, इस पर हम कहना चाहते हैं कि ये केवल समाचार थे जिसमें घटनाक्रम को ज्यों का त्यों बताया गया।
0: शायद इसीलिए आपको खबर अधूरी सी लगी होगी। और इस पूरी मुलाकात के क्या मायने थे और इसके पीछे क्या इरादे थे, उस पर अगर कभी कोई सामयिकी या विश्लेषण होता है तो उस पर भी हम जरूर जानकारी देंगे। फिलहाल केवल एक समाचार की तरह इसे प्रस्तुत किया गया।
1: अब अगला पत्र है किसिंगा ओडिशा से सुरेश अग्रवाल जी का। दरअसल इनके 2 पत्र हैं।
0: अच्छा, तो दोनों ही ले लीजिए, बताइए क्या लिखा है।
1: जी, लिखते हैं कि वर्ष 2011 में जापान में आए विनाशकारी महाभूकंप की स्मृतियां आज भी मन को विचलित कर देती हैं। कल इवाते प्रीफेक्चर के निकट समुद्र में आए 7.2 तीव्रता के भूकंप का समाचार जानकर भी चिंता हुई। हालांकि ये जानकर राहत मिली कि इस प्राकृतिक आपदा से किसी प्रकार की जनधन हानि नहीं हुई और संभावित संकट टल गया। ईश्वर से प्रार्थना है कि जापान सहित समस्त विश्व को ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखें।
0: सुरेश जी, आपकी शुभकामनाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल पता नहीं क्यों बहुत बड़े भूकंप आ रहे हैं
1: जी,
0: और उस दिन फुजी पर्वत के पास भी काफी बड़ा भूकंप आया, और क्योंकि फुजी पर्वत के पास टोक्यो है तो इसलिए हमें भी काफी बड़ा झटका महसूस हुआ ना।
1: हाँ, और समय रात 10:30 के आसपास था, तो
0: हाँ,
1: सोने ही जा रही थी ना।
0: अच्छा,
1: ऐसे में अचानक मोबाइल पर अलर्ट बजने लगा और मुझे लगा कि इस बार कोई बड़ा भूकंप आ जाएगा।
0: हाँ, मोबाइल पर अलर्ट की आवाज से ही दिल की धड़कने बढ़ जाती है ना। भूकंप से तो बाद में निपटते हैं, है ना?
1: अलर्ट से निपटते हैं। अच्छा, अब सुरेश जी का ये दूसरा पत्र है।
0: अच्छा,
1: हाँ, इसमें लिखते हैं कि 28 जून को चेरी के देश से के अंतर्गत दी गई जानकारी से मन प्रसन्न हो गया। ये जानकर मुझे तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ कि फुटबॉल विश्व कप के मैच समाप्त होने के बाद जापानी दर्शक स्वयं मैदान में बिखरे कचरे की सफाई करते हैं। वास्तव में अनुशासन, स्वच्छता, सामाजिक उत्तरदायित्व और नागरिक संस्कार का ऐसा अनुपम उदाहरण विश्व में शायद केवल जापान ही प्रस्तुत कर सकता है। दुर्भाग्यवश कुछ लोग इस विषय पर नकारात्मक टिप्पणियां करते हैं। ऐसे लोगों के प्रति मुझे केवल सहानुभूति होती है, क्योंकि वे जापान की संस्कृति, उसके नागरिक मूल्यों और वर्षों से विकसित सामाजिक चेतना से पूर्णतः अनभिज्ञ हैं। जापान ने अपने व्यवहार से ये सिद्ध कर दिया है कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक पहचान केवल उसकी आर्थिक या तकनीकी प्रगति से नहीं, बल्कि उसके नागरिकों के संस्कारों और सामूहिक उत्तरदायित्व से होती है। ये भी अत्यंत हर्ष का विषय है कि जापानी फुटबॉल टीम ने अपने उत्कृष्ट खेल, अनुशासन और जुझारूपन के बल पर विश्व कप के नॉकआउट चरण में स्थान बनाया है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए पूरी जापानी टीम तथा उसके समर्थकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
0: सुरेश जी, आपने सही जवाब दिया नकारात्मक टिप्पणियां करने वालों को। ये जापान की पूरी सभ्यता की पहचान है। बाकी लोग भी जापानी लोगों का अनुसरण कर रहे हैं और ये मिशन अगर फैलता जाए तो इसमें कोई बुराई तो नहीं।
1: और वायला जी, फेसबुक पर जापानी खिलाड़ियों की साफ सफाई की तस्वीरें भी तो वायरल हो रही हैं।
0: हाँ।
1: जापानी फुटबॉल टीम ने मैच के दौरान जिस लॉकर रूम या कहें ड्रेसिंग रूम का इस्तेमाल किया था, उसे भी बिल्कुल चमचमाता छोड़ कर गए हैं।
0: और दुर्भाग्य से जापान ब्राजील से हार गया और विश्व कप से बाहर हो गया है, लेकिन टीम की मेहनत और लगन उसके अच्छे प्रदर्शन से जुड़ी हुई है, है ना? अच्छा कमाईनी जी, आप फेसबुक की कुछ टिप्पणियां ले लीजिए।
1: जी हाँ, क्यों नहीं।
0: तो कमाईनी जी, पिछले एक अंक में हमने माकी सुशी यानी सुशी के रोल बनाने की विधि सिखाई थी, तो इस पर उमेश कुमार शर्मा जी लिखते हैं कि इस व्यंजन को बनाने का अनुभव प्राप्त करना मेरे लिए सुखद क्षण होगा।
1: तो देर किस बात की उमेश जी, आज ही बनाए और अपने परिवार को परोसे
0: जी।
1: इसी पोस्ट पर मुरारी शाह, राजेश गिरी और लता पांडे ने लिखा है, बहुत ही सुंदर। साथ ही मुरारी शाह ने ये भी पूछा है कि क्या हिंदी सेवा बंद हो गई है, बताएं।
0: मुरारी जी, हिंदी सेवा बिल्कुल भी बंद नहीं हुई है। देखिए, आज भी हम आपकी सेवा में मौजूद हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर अनेक ऑडियो वीडियो सामग्री का आनंद ले सकते हैं। और अब समय हो रहा है हमारी फ्रीक्वेंसी की जानकारी देने का, तो कृपया नोट कर लीजिए हमारी फ्रीक्वेंसी।

0: Pues sí.
1: यह है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
2: स्वागत है एक बार फिर से चेरी के देश से कार्यक्रम में। दोस्तों, अब समय है आओ पकाएं जापानी खाना का। वाहला जी, श्रोताओं की अक्सर शिकायत रहती है कि हम जो व्यंजन सिखाते हैं वो अधिकतर मांसाहारी होते हैं।
3: हाँ, ये तो सही कहा आपने।
2: तो इस बार हम लेकर आ रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जो सब्जियों से बनाई जाती है। तो आइए सीखते हैं बनाना आगे बिताशी, यानी सूप में डली तली सब्जियां।

0: आओ पकाएं जापानी खाना कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे जापानी व्यंजन आगे बिताशी। इसमें सिर्फ सब्जियों का इस्तेमाल होता है और इसे खाकर पेट भी अच्छी तरह भर जाता है।
1: और दोस्तों, ये व्यंजन सिखाने के लिए आज भी हमारे साथ हैं पाक कला विशेषज्ञ सुश्री आकिको वातानाबे।
2: कोनिचिवा, वातानाबे आकिको देस। 今日ご紹介する揚げ浸しは、野菜を揚げた後、だしで作った。
0: Namaskar, main hoon Akiko Watanabe. Aaj jo vyanjan aap seekhne wale hain, uska naam hai aage bitashi. Isme hum kuch sabziyon ko talenge aur phir unhe dashi wale ek rasse mein dal denge. Talne se sabziyon ka rang khil uthta hai aur unse pet bhi jaldi bhar jata hai. ये व्यंजन मौसमी सब्जियां खाने का स्वादिष्ट तरीका है।
1: तो सबसे पहले नोट कर लीजिए चार लोगों के लिए ये व्यंजन बनाने की सामग्री। आपको चाहिए एक आलू, दो छोटे बैंगन, दो शिमला मिर्च और 100 ग्राम शिमेजी मशरूम।
0: ऊपर से सजाने के लिए आपको चाहिए 15 ग्राम अदरक और 100 ग्राम दाईकोन यानी बड़ी मूली।
1: और रसा बनाने के लिए तैयार रखिए एक कप दाशी स्टॉक, दो बड़े चम्मच सोया सॉस और एक छोटा चम्मच चीनी। इसके अलावा आपको मशरूमों पर लगाने के लिए थोड़ा सा मैदा भी चाहिए और तलने के लिए वनस्पति तेल।
0: दाशी स्टॉक कात्सुओ बुशी यानी भुनी हुई सूखी कात्सुओ मछली के कतलों से बनाई जाती है।
1: और अगर कात्सुओ बुशी उपलब्ध ना हो तो आप बने बनाए मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: तो चलिए अब व्यंजन बनाना शुरू करते हैं। पहले आलू छील लीजिए।
1: अब आलू के तिरछे गोल टुकड़े काटिए। इन टुकड़ों की मोटाई 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इनका व्यास लगभग 4 सेंटीमीटर रखने की कोशिश कीजिए। इसके बाद बैंगनों की डंठल काट दीजिए, फिर इनके लंबाई में 4 टुकड़े कर लीजिए।
0: अब हम शिमला मिर्च की पट्टियां काटेंगे। तो शिमला मिर्च के बीज निकाल दीजिए और उनकी लगभग 2 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टियां काट लीजिए।
1: अब शिमेजी मशरूमों की बारी। उनकी डंठल का सख्त निचला हिस्सा काट दीजिए, फिर मशरूमों को 3 या 4 के गुच्छों में बांट लीजिए। तलने वाली सब्जियां तैयार हो गई हैं। अब ऊपर से सजाने वाली सब्जियों की बारी है। पहले अदरक का छिलका उतारकर उसे कद्दूकस कर लीजिए। इसके बाद दाईकोन यानी बड़ी मूली का छिलका उतारिए और उसे भी कद्दूकस कर लीजिए।
0: मूली कद्दूकस करने के बाद उसे एक महीन छलनी में रख दीजिए ताकि उसमें से अतिरिक्त नमी झर जाए।
1: इसके बाद रसा बनाएंगे। इसके लिए एक कप दाशी स्टॉक में 2 बड़े चम्मच सोया सॉस और 1 छोटा चम्मच चीनी मिलाइए। चीनी घुलने तक सारी सामग्री को अच्छी तरह मिलाइए।
0: अब सब्जियां तलेंगे। इसके लिए आप डेगची या फ्राइंग पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डेगची या फ्राइंग पैन में पेंदे से 4 सेंटीमीटर ऊपर तक तेल डालिए और उसे गैस पर रख दीजिए।
1: जब तक तेल गर्म होता है, बैंगन और आलू एक छलनी में डालकर पानी निकाल दीजिए और उनके टुकड़ों को एक साफ कपड़े से थपथपाकर सुखा लीजिए।
2: यसाई वो आगेरु तोकी नो ओंदो गा दाइजी देस। नस वा कोन दे आगेरु तो तोतेमो किदे दे ओइशिकु
0: शी। तलते समय तेल का तापमान सही होना बहुत जरूरी है। बैंगन को बहुत गर्म तेल में तलने से उसका रंग खिल उठता है और स्वाद भी निखर जाता है। लेकिन शिमला मिर्च और आलू थोड़े हल्के तापमान पर तलने चाहिए, नहीं तो वो बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे।
1: तो पहले वो सब्जियां तलिए जो ज़्यादा गर्म तेल में तलनी होती हैं। हम बैंगन से शुरू करेंगे। तेल का तापमान लगभग 170 से 175 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए।
0: बहुत गर्म तेल में तलने से बैंगन के सुंदर बैंगनी रंग में और चमक आ जाती है।
1: तो जब तेल सही तापमान तक गर्म हो जाए तब बैंगन के टुकड़े डाल दीजिए। अगर आप इनको ऐसे डालेंगे कि इनका छिलका नीचे की ओर हो तो इनका बहुत अच्छा रंग आएगा। बैंगन के टुकड़े सिर्फ 1 से 2 मिनट तलिए।
0: बैंगन के टुकड़ों का बैंगनी रंग बहुत सुंदर लग रहा है। कम तापमान पर तलने से ऐसी चमक नहीं आती।
1: लगभग एक मिनट के बाद कुछ टुकड़े चिमटी या चॉपस्टिक्स से उठाकर देखिए। अगर उन पर चॉपस्टिक्स या चिमटी का निशान बन जाता है तो इसका मतलब है कि वो तैयार हैं।
0: अब आप टुकड़ों को तेल से निकाल सकते हैं। निकालने के बाद उन पर लगा अतिरिक्त तेल जरूर हटा लीजिएगा। इसके बाद आलू तलने की बारी। तेल का तापमान लगभग 160 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जब तेल में चॉपस्टिक्स या चिमटी डालने पर बुलबुले उठने बंद हो जाएं, तब आलू के टुकड़े डालिए।
1: आलू के टुकड़े करीब 3 मिनट में पक जाएंगे। इस बीच शिमेजी मशरूमों पर थोड़ा मैदा लगा लीजिए।
2: किनोको वा तोतेमो सुइबुन गा ओई नोदे कोनो मामा आगेते शिमाउ तो बेचट्टो शिता कांजी नात्ते
0: शिमाउ। मशरूमों में बहुत सारी नमी होती है, इसलिए उन पर पहले मैदा लगाना चाहिए ताकि वो तलते समय पानी ना छोड़ें।
1: अब आलू के साथ शिमला मिर्च भी तेल में डाल दीजिए। शिमला मिर्च की पट्टियों को पकने में सिर्फ 1 मिनट ही लगेगा। जब वो थोड़े पारदर्शी होने लगें तब उन्हें निकाल दीजिए।
0: अब आलू के टुकड़ों में सीक गाड़ कर देखिए कि वो पक गए हैं या नहीं। अगर सीक आसानी से गड़ जाए तो आलू के टुकड़े निकाल लीजिए।
1: आलू और शिमला मिर्च निकालने के बाद मैदा लगे शिमेजी मशरूम डालिए। शिमेजी मशरूम भी हम 160 डिग्री सेल्सियस तापमान में तल लेंगे।
0: शुरू में मशरूमों से बहुत सारे बुलबुले निकलेंगे। जब बुलबुले थोड़े कम हो जाएंगे तब मशरूम कुरकुरे होने लगेंगे।
1: लगभग 2 मिनट बाद बुलबुले उठने बंद हो जाएंगे और तेल से ज्यादा आवाज नहीं आएगी। अब मशरूम निकाल लीजिए।
0: सारी सब्जियां तलने के बाद उन्हें रसे में डालना है, तो रसा एक सपाट थाली या ट्रे में डालिए और उसमें सारी सब्जियां डाल दीजिए। बैंगन के टुकड़ों का छिलका ऊपर की ओर रखिए ताकि उनका रंग बना रहे।
1: तो अब जान लेते हैं ये व्यंजन परोसने का तरीका।
2: できるだけ立体的に盛った方がいいので、平らに並べるのではなく、同じ素材をちょっと重ねて。
0: ये व्यंजन सबसे अच्छा तब दिखता है जब सब्जियां एक के ऊपर एक रखी हों, ना कि साथ साथ। तो इन्हें एक के ऊपर एक सजा लीजिए, जैसे पहले आलू का एक गोल टुकड़ा रखिए और उसके ऊपर आलू का ही एक और टुकड़ा तिरछा करके रखिए।
1: दोस्तों, इससे आपका व्यंजन दिखने में बहुत सुंदर लगेगा। और आप चाहें तो इसे और सुंदर बनाने के लिए अलग अलग रंगों की सब्जियां साथ रख सकते हैं। अब सुनिए कि व्यंजन को और कैसे सजाना है।
2: दाइकों का तकासा 2 सेंटी ぐらい のちょっと小さな山に形を整えておいて、材料の右前
0: に कद्दूकस की हुई दाइकों यानी बड़ी मूली और अदरक सजाते समय दाईं तरफ मूली का लगभग 2 सेंटीमीटर ऊंचा ढेर लगाइए और उसके बगल में रख दीजिए अदरक का छोटा सा ढेर।
1: सारी सामग्री थाली में सजाने के बाद सब्जियों के ऊपर से थोड़ा रसा डाल दीजिए, इससे उनमें चमक आ जाएगी। ध्यान रहे कि रसा कद्दूकस की हुई मूली और अदरक पर ना पड़े।
2: 今日は揚げ浸しの作り方をご紹介しました。ぜひ身近にあるいろいろな野菜でお試しください。
0: दोस्तों, आज आपने बनाना सीखा जापानी व्यंजन आगे बिताशी। उम्मीद है कि अपने आसपास मौजूद तरह तरह की सब्जियों से आप ये व्यंजन बनाकर जरूर देखेंगे।
3: कमानी जी, मैंने इसी कार्यक्रम से ये व्यंजन सीखा था और तब से गर्मियों में खास तौर से इसे बनाती आ रही हूँ और मेरे घर में सभी को ये

0: पसंद है, कितना भी बनाओ कम ही पड़ जाता है।
1: हाँ वैसे बनाने में काफी सरल है, मैं भी बनाकर देखती हूँ।
0: हाँ और बैंगन वगैरह का बनाओ, कद्दू का बनाओ तो बहुत अच्छा बनता है,
1: और वो तो गर्मियों में बहुत अच्छा होता है। ये सब्जियाँ तो गर्मियों के लिए बहुत अच्छी होती हैं।
0: बिल्कुल, अभी यही सब सब्जियाँ तो चल रही हैं।
1: हाँ हाँ, मैं बनाकर पक्का पक्का पक्का देखती हूँ
0: जी,
1: और आप सबको खिलाती हूँ
0: जी। बिल्कुल,
1: अगर अच्छा बना तो, अच्छा बना तो।
0: और दोस्तों समय हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमें ढेर सारे पत्र लिखें, और अगर पत्र लिखना झंझट लगता है तो फेसबुक पेज पर ही अपनी टिप्पणी आप डाल सकते हैं। तो इंतजार रहेगा आपकी टिप्पणियों का, और अब हमें दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। तब तक अनुमति दें वायला कवानों को
1: और कामायनी सिंह को।
0: सायोनारा, नमस्कार।

0: कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें, आइए दीवान खाना में चलें।
1: ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, वसीमा आबिद और खदीजा शाह।
2: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामईन को आदाब। भाई वसीमा, गर्मी बहुत बढ़ गई है, घरों के अंदर भी लू लगने के वाकयात हो रहे हैं।
1: हाँ, जापान की गर्मी पाकिस्तान से मुख्तलिफ है, यहाँ नमी काफी ज्यादा है।
0: असल में जापान के इर्द गिर्द समंदर जो है, तो खलील साहब, इसीलिए हवा में नमी भी काफी ज्यादा है और पसीना जल्दी खुश्क ही नहीं होता।
1: मैं दूसरी बार जापान आया हूँ, लेकिन अभी तक जापान की गर्मी का आदि नहीं हो पाया।
2: वैसे कहते हैं कि गर्मियों में जापान के लोग पाको हिंद की तरह के तीखे खाने बहुत शौक से खाते हैं।
1: जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने इस हफ्ते गालिब हुसैन साहब का इंटरव्यू किया है, जो टोक्यो में गुज़िश्ता 4 दहाइयों से हलाल फूड के कारोबार से वाबस्ता हैं।
0: सामिन, सिलसिला है जापान में पाकिस्तानी।
1: मैंने इंटरव्यू के आगाज में उनसे पूछा कि उन्होंने इस कारोबार का आगाज कब किया और उस दौर में मार्केट की सूरत हाल क्या थी, तो उन्होंने बताया।
3: ये 1987 की बात है कि वो मैंने जो हलाल फूड है इसकी इब्तदा जो 1987 में की थी। वो एक ऐसा ज़माना था कि जिस ज़माने में जापान के अंदर जो हलाल खाने के लिए कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ मैसर नहीं थी। बड़ा एक 1.5 साल का अरसा बड़ा मुश्किल गुजारा है, लेकिन अल्लाह का ये करम हुआ कि अल्लाह ने यही हिम्मत दी तो हम इसी काम में आ गए। तो दिन ब दिन वो सिलसिला जो आगे बढ़ता गया और बाद में आने वाले लोगों के लिए आसानी हो रही।
4: तो उस दौर में हलाल की क्या सूरत हाल थी? बिल्कुल ही टोक्यो में अवेलेबल नहीं था या दूर जाना पड़ता, क्या सूरत?
3: देखिए जी, उस वक्त तो बिल्कुल जापान के अंदर हलाल आप क्या बोलते हैं, बल्कि वेजिटेरियन चीज़ें भी आपको, दालें, मसाला जात, वो भी यहाँ पर नहीं मिलते थे। हमारा ये वो ज़माना ये था कि हम 3 टाइम यहाँ पर डबल रोटी खाया करते थे, उसको टोस्ट करके खाते थे, और सबसे ज़्यादा जो हमारी गज़ा होती थी वो अंडे और आलू, इस टाइप की चीज़ें जो है वो ज़्यादा हुआ करती थी। तो जापान के अंदर उस वक्त बिल्कुल कहीं भी हलाल जो है वो अवेलेबल नहीं था। कुछ चंद एक लोग जो कि किसी के गांव वगैरह में रहते थे, वहाँ पर अगर उनको कुछ मुर्गी वगैरह, चिकन नज़र आ जाए तो वहाँ पर उस एरिया में को खुद अपने हाथ से स्लॉटर करके अपने ज़ाती इस्तेमाल किया, लेकिन उस वक्त कम्यूनिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी।
4: कारोबार में ऊंच नीच तो आती रहती हैं, तो कौन सा वक्त है, कौन सा दौर है जो आप समझते हैं कि वो आपके लिए सबसे मुश्किल था और आप उस मुश्किल वक्त से कैसे निकले?
3: देखिए, कारोबार में तो ये मुश्किलें तो आती रहती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक तो ये था कि हम ग्रेजुअली आस्ता आस्ता इसको बढ़ा रहे थे, एकदम उसको बढ़ाने की कोशिश नहीं की। आप कोरोने का ज़माना, जब कोरोना आया उस वक्त का आप बोल सकते हैं कि हमारी बहुत सारी चीज़ें जो है वो जापान में नहीं आ पा रही थी और लेट हो रही थी, वो ज़माना जो है वो थोड़ा सा वो मुश्किल था। बल्कि उसी ज़माने में ओलंपिक गेम्स थी जापान में, तो ओलंपिक्स गेम के अंदर हमारा हमसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट ने जाना था, कमिटमेंट हुई हुई थी, और उस वो हमने इंपोर्ट भी की हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कैंसिल हो गई। कैंसिल होने से हमें थोड़ा सा वो दबाव ज़रूर आया, लेकिन हमने दूसरी मार्केट में उनको निकाल दिया। उसके बाद 1 साल के बाद ओलंपिक हुई तो कुछ चीज़ें जो है वो उसमें भी निकल आई। में
4: अगर हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान और जापान को, तो पाकिस्तान में कारोबार करना जापान में कारोबार करने से कैसे मुख्तलिफ है?
3: पाकिस्तान में भी कारोबार करना ही ऐसा ही है।

0: जैसे जापान में कोई ख़ास इतनी मुख्तलिफ तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पर हर चीज़ जो एक सिस्टम के अंदर होती है वहाँ पर भी है, अल्लाह का शुक्र है।
1: ये रेस्टोरेंट का
0: लेकिन
1: बिजनेस आप अगर यहाँ कर रहे हैं तो कैसे मुख्तलिफ है? यही बिजनेस अगर आप पाकिस्तान में करते तो कैसे करते?
0: देखिए रेस्टोरेंट के बिज़नेस के लिए ये है कि यहाँ पर करने से मुझे खुशी ये होती है कि जब लोग यहाँ पर दरवाजे पर आते हैं तो उनको हलाल नज़र आता है तो वो बहुत खुश होते हैं, कहते हैं अच्छा ये हलाल चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये जापान का जिस रेस्टोरेंट में आप बैठकर मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं ये जापान का पहला हलाल रेस्टोरेंट है, ये सेम लाइक जैसे हलाल फूड का भी पहला वो सिलसिला था, ये 1990 में शुरू हुआ था।
1: तो
0: तो
1: इस तरफ
0: पाकिस्तान
1: आप
0: में
1: कैसे शिफ्ट हुए?
0: देखिए उसमें ये ना कि ऑफकोर्स हम फूड का काम था, फूड के ऊपर ही कर रहे थे, तो जहरी बात है कि लोगों को वो पका पकाया खाना जो है वो तो नहीं मिलता था, और हमने कहा कि हम बिल्कुल ओरिजिनल पाकिस्तानी खाना लोगों को दें। हमने रेस्टोरेंट का नाम भी मरहबा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट रखा, और उस वक्त भी लोग कहते थे ये कि इंडियन ना लगाए साथ लगाएं, इंडियन खाना जो है यहाँ पर जाना जाता है, पाकिस्तानी खाना नहीं जाना जाता। लेकिन मैंने उनको बोला कि देखें इंडियन भी किसी ने शुरू किया था तो लोगों ने जाना जाना, और आप पाकिस्तानी में हम शुरू करेंगे ही अब तो तभी लोग जानेंगे, और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को पता है कि पाकिस्तानी खाना जो कैसा होता है।
1: तो अभी आपके तकरीबन कुछ 4 दहाइयों से आप ये काम कर रहे हैं। अब टोक्यो चूँकि तकरीबन एक मरकज़ बन चुका है कसीर सकाफती खानों का, कोई भी खाना आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो आपके तजुर्बे की बुनियाद पर आप क्या समझते हैं, वक्त गुजरने के साथ साथ जापान के लोगों में हलाल फूड के बारे में उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी समझ बूझ में इजाफा हो रहा है, और आपके जो कस्टमर्स हैं जापानी कस्टमर्स, उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है या वो कम हो रहे हैं?
0: जापानी लोग भी ना ये डिफरेंट कंट्रीज़ के खाने खाना पसंद करते हैं, जब इंडियन खाने जो वो खाते थे तो पहले तो बहुत सारे वो लोग आए, फिर आस्ता आस्ता आस्ता जब उनको एक चीज़ पता चलती गई, फिर ज़्यादा जो है जब ये सोशल मीडिया का ज़माना शुरू हुआ, जिस ज़माने में हमने शुरू किए ये चीज़ें उस वक्त तो ये सिलसिले नहीं हुआ करते थे, लेकिन एक आस्ता आस्ता जब ये सोशल मीडिया का दौर आया तो उसमें उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चलना शुरू हुआ, तो और बहुत अच्छा रहा
1: बढ़ने
0: सिलसिला
1: शुरू
0: था,
1: हुए।
0: बढ़ना
1: ठीक
0: शुरू हो
1: है।
0: गया।
1: अच्छा, वक्त गुजरने के साथ साथ जापान के कारोबारी माहौल में आप क्या तब्दीली महसूस कर रहे हैं? आज कारोबार करना 4 दहाइयां पहले कारोबार करने से कैसे मुख्तलिफ है?
0: देखिए बहुत ज़्यादा उसमें कोई मुख्तलिफ चीज़ें नहीं है, लेकिन अब आजकल के लिए ज़ाहिर है कि लेबर जो है ना वो उसकी शॉर्टेज जो है वो महसूस होती रहती है, लेबर जो है स्पेशली जपनीज़ जो है वो हमें लेबर जो है वो अवेलेबल नहीं होती, वो थोड़ी हमें एक परेशानी जो है वो रहती है। तो
1: पहले होती
0: उसके
1: थी बिल्कुल
0: जी पहले
1: पहले
0: पहले पहले बेहतर था, फिर भी अब जो है वो दिन ब दिन जो है वो चीज़ें हो रही है, बल्कि इवन का आप जापान के अंदर भी देखें हर तरफ जो फॉरनर जो है वो बहुत ज़्यादा गैर मुल्की आए हुए हैं, उसकी वजह यही है कि इनकी अपनी जो है वो जो शॉर्टेज है उसकी वजह से।
1: अच्छा गालिब साहब, हालिया दिनों में हुकूमत ने बिजनेस मैनेजर वीज़ा की शराइत में सख्ती की है, आप क्या समझते हैं इसका पाकिस्तानी जो कम्युनिटी पे है इस पे क्या असरात मुरतब हो रहे हैं?
0: देखिए बिजनेस मैनेजर वीज़ा के लिए जो कैपिटल का मेन उसमें एक इशू है, जापनीज़ एम्प्लॉय का इशू है, जापनीज़ एम्प्लॉय हर किसी के पास होते हैं, हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के पास तकरीबन और जॉय मौजूद हैं, कैपिटल जो है वो लोगों ने पहले से ही काफ़ी हद तक लोगों ने इंक्रीज़ किया हुआ है, हमारे लोग गाड़ियों का काम करते हैं और बड़ा अच्छा हैंडसम काम करते हैं, फिर हमारे लोग जो है परमानेंट रेजिडेंट्स में बहुत हैं, जापनीज़ फैमिली वाले लोग बहुत हैं, तो उनके ऊपर मैं तो इस वीज़े से अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी के ऊपर तो ज़्यादा कोई असर नहीं देखता, ऑलमोस्ट लोग जो है वो सेटल ही हैं, मतलब कि वो कर रहे हैं
1: शरायत को पूरा कर
0: जो
1: रहे
0: शरायत
1: हैं।
0: जो है वो पूरी कर रहे हैं, तो वो तो ज़ाहिर है, पर जब जिस मुल्क में हम रह रहे हैं उसकी शरायत को तो हमें मानना पड़ेगा, उसके मुताबिक ही चलना है, ये तो हमारे लिए ज़रूरी है।
1: अच्छा, अब कुछ पर्सनल लाइफ की तरफ आते हैं। आप तकरीबन 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसा जापान में रह रहे हैं, तो कुछ ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कोई दिलचस्प वाक़यात, कोई आपके यादें हों?
0: हम तो कहते हैं जैसे वो हलाल खाते भी हैं तो और यहाँ पर मेहनत भी ऐसे ही करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि अरे हमारे पास सच्ची जो बात है कि फैमिली के लिए वक्त यहाँ नहीं निकलते, वो कहते थे कायदे आज़म साहब ने फरमाया था काम काम और फिर काम, तो वो जापान वालों ने सुन रहे हैं और जापान में ये होता है काम काम, तो हम भी ज़ाहिर है इस कम्युनिटी के जापान हमारा दूसरा मुल्क है, हम जापान से भी इतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी अपने मुल्क पाकिस्तान से भी मोहब्बत करते हैं।
1: अच्छा, जापान की कोई ऐसी चीज़ जिसको देख के आपको लगता है काश ये पाकिस्तान में मैसर होती?
0: जापान के अंदर जो सफाई सुथराई जो है वो हमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, सच्ची जो बात है इस किस्म की चीज़ें जो है वो पाकिस्तान में भी होना, जैसे हमारे पंजाब में तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया है, काफ़ी हद तक हमें वहाँ पर क्लीननेस नज़र आती है। तो ये चीज़ जो है वो ज़ाहिर है हमें थोड़ी सी वो आती है कि हमारे मुल्क में भी वो ऐसे ही वो सारी चीज़ें हों। तो नहीं,
1: कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पाकिस्तान में, आपका क्या ख्याल है इस सफाई को ही अगर हम ले लें तो पाकिस्तान में इसको कैसे, हालांकि हमारे तो मज़हब में भी सफाई नस्वी
0: शत्रुल ईमान है। जी जी, उसके लिए यही है कि मैनर्स को जो है ना बचपन से ही सिखाना बच्चों को बड़ा ज़रूरी है।
1: स्कूल
0: जैसे स्कूल स्कूल से मैं तो कहता हूँ किंडर गार्डन से भी वो सिखाना, और यहाँ पर ये ऐसे होता है जापान में ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपकी फर्स्ट क्लास जो किंडर गार्डन में आप जाते हैं 1.5 साल के गए 2 साल वहाँ से ही आपको सिखाना शुरू कर दिया जाता है। तो फिर ये कि वो अपना दम अपने साथ उसको चीज़ को जो है वो अगर हम ऐसे अपनाते जाएंगे तो हमने ये नहीं सोचना कि मुल्क नहीं करना है, सबसे पहले मैंने अपने आप को ठीक करना है, तो उससे फिर आगे जो है वो सारी कौम भी वो ठीक होती जाएगी। तो उस चीज़ को ज़्यादा जो अपनाने की ज़रूरत है, मैं तो ये कहूँगा।
1: अच्छा, आखिर में ये बताइए कि वो नौजवान जो जापान में बिज़नेस करना चाह रहे हैं या शुरू कर चुके हैं, अपने तजुर्बे की बुनियाद पर आप उनको क्या मशवरा देंगे?
0: देखिए जी, सबसे तो ज़रूरी है कि जी जापान के अंदर जो है वो इंग्लिश भी चलती आज कल चलती है, कुछ ज़माने में पहले नहीं होती थी। सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि वो जापानी ज़बान को अच्छे तरीके से सीखें, उसके ऊपर फुल आपका अबूर होना चाहिए जापानी ज़बान के ऊपर, और उसको सिर्फ काम के लिए नहीं, शौक़ से उसको सीखें कि ताकि आप यहाँ पर आएँ तो आपको कारोबार करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। तो देखिए, जिस दुनिया में जिस जगह भी आप रहते हैं, अगर आप मेहनत करने वाले बंदे हैं तो आप कामयाब ज़रूर होंगे। तो अपने मुल्क भी होता है, वहाँ पर तो अपनी ज़बान है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जो है वो जब ज़बान नहीं आती तो आपको काफ़ी मुश्किल देखनी पड़ती है। लिहाजा आप जापान में आ रहे हैं या आएंगे या मौजूद हैं, आप जापानी ज़बान को दिन ब दिन इम्प्रूव करें, और ये मज़ेदार ज़बान भी है, मज़ा भी आता है इसको सीखने में।
1: बहुत शुक्रिया गालिब साहब, एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस को टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया
2: जी। ये थे जनाब गालिब हुसैन।
3: खदीजा, आपको भी याद होगा कि लगभग 2 या 3 दहाइयां पहले सिर्फ टोक्यो या चंद एक मकामात पर ही हलाल दुकानें थीं, और होकाइडो जैसे दूरदराज प्रीफेक्चरों में मुकीम मुसलमान यहीं से पार्सल मंगवाते थे।
2: जी बिल्कुल, हम भी महीने में 1 या 2 बार तो वैसे सभी का हलाल फूड तो ज़रूर जाना होता है। अच्छा, जापान की मुसलमान आबादी के लिए हलाल कारोबार वालों की बड़ी खदमात हैं।
3: अच्छा खदीजा, एक तो हलाल फूड की दस्तियाबी पहले की नस्बत बड़ी आम हो गई है, और खलील साहब आपको बताऊं कि अब इसके अलावा थाईलैंड और वियतनाम जैसे एशियाई ममालिक के खाने पीने पहले की नस्बत बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, और उनकी मार्केट भी बड़ी फैल रही है। तो आजकल ऐसे ही आज ऐसे ही लोगों को खराज तहसीन पेश करने के लिए हम गीत सुनवा रहे हैं।
2: अरिगतो अरिगतो यानी शुक्रिया शुक्रिया, इसको पेश करने वाले हैं ताकाया कावासाकी।
3: ताकाया कावासाकी 1995 में जापान के तोचीगी प्रीफेक्चर में पैदा हुए।
4: उन्होंने अपनी मुनफरिद भारी आवाज के जज्बाती इरतआश और यादगार धुनों से सामीन को महसूर कर दिया।
3: उनका ब्रेक थ्रू गाना माहो नो जुतान यानी जादुई कालीन 2020 में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और अब तक 400 मिलियन से ज्यादा स्ट्रीम्स हासिल कर चुका है।
4: 300 मिलियन से ज्यादा स्ट्रीम्स लेने पर इस गाने को जापान की रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन की जानिब से ट्रिपल प्लैटिनियम सर्टिफिकेट से नवाजा गया।
2: 2025 के उनके मूलगीर हॉल्टर मदा यूमे नोनाका ने 30,000 शुरका को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। उसके बाद कावासाकी ने 2026 में ओसाका जो हाल और निप्पोन बुदोकान में मजीद शोज किए, जो इनके कैरियर के अब तक के सबसे बड़े हेडलाइन कॉन्सर्ट्स थे।
4: हमारे अमले की जापानी रुकन उराता साहिबा बताती हैं कि अरिगातो अरिगातो दोहराने से यानी शुक्रिया शुक्रिया कहने से लगता है कि ये दिल से निकला मोहब्बत भरा गाना है। ये गीत इस चैलेंज के बारे में है कि आप किसी ऐसे शख्स के लिए इंतहाई शुक्रगुजारी और मोहब्बत का इजहार करें जो आपके लिए सब कुछ है।
3: राधा साहिबा कहती हैं, गीत के बोलों का रावी आम लम्हात अपने प्यारे के साथ गुजारता है। आम लम्हात यानी घर की तरफ चलना, आज क्या पकेगा जैसे मौजू पर बात करना, या मुस्तकबिल में सैर के लिए कहाँ जाना है, और पुरसकून रोज़मर्रा तजुर्बात एक दूसरे को बताते हुए गुजारे जाने वाले आम लम्हात। ये बज़ाहिर सादा लम्हात किसी फिल्म के मनाजिर की तरह गैरमामूली लगते हैं, क्योंकि वो अजीज़ जान शख्स आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत और खुशी लाता है।
2: गीत का रावी बोलों में अपने जज्बात को बयान करने के लिए शुक्रिया से बड़ा कोई लफ्ज़ तलाश करता लगता है। अगर जिसका दिल जज्बात से मामूर है लेकिन उसे हर इजहार नाकाफी सा लगता है, जो बेपनाह शुक्रगुजारी اور محبت وہ محسوس کرتا ہے اس کی شدت سے اس کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔
4: گیت کا مرکزی خیال کسی خاص شخص کے ساتھ گزاری جانے والی روزمرہ زندگی کی خوبصورتی کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، اور یہ خیال سامنے لاتا ہے کہ سب سے سادہ لفظ شکریہ، یہ صرف پانچ حرفی لفظ، کبھی کبھار سب سے شدید جذبات لا سکتا ہے۔
3: گیت کے بولوں میں ایسے الفاظ کی تلاش کا ذکر ہے جو آریگاتو یعنی شکریہ سے آگے جائیں، یعنی اس سے بھی کہیں زیادہ وسیع مفہوم کے حامل ہوں۔ تو آئیے سنتے ہیں۔

ラワウェラワウェ、ようなうざずんでラウェ。